अच्छे श्रोता है तो आपको मेरी बात माननी चाहिए। और इसके अलावा कुलदीप सिंह खुरीवाल का मैसेज हमें सेक्टर 17 वसुंधरा गाजियाबाद से मिला है, और ये मैसेज हमें मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी और बलवीर का ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद से, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सामिर साबिर अंसारी मेहराज जहां का मैसेज हमें, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, तौसीफ और कलीम अंसारी का हमें मैसेज मिला है, नई बस्ती गंजुंडवाड़ा से, अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर, मुजक्किर और जरीफ का हमें मैसेज पहुंचा है, दाऊद सराय सहारनपुर से, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष का हमें मैसेज मिला है, बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, रेणु गोयल, एसपी गोयल ने हमें रोहिणी दिल्ली से मैसेज पहुंचाया है, और हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा का हमें दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, श्री सुधाकर राजे जाधव देशमुख, प्रशांत राजे जाधव देशमुख, जग्गू ताई राजे जाधव, कुमार संचित और प्रथमेश सर्वद, कल्पना सानवी और प्रणाली देशमुख का मैसेज हमें मिला है पूरे परिवार के साथ, मुक्काम पोस्ट कालीगांव जाफराबाद से, और ये मैसेज हमें महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा का मैसेज पहुंचा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुमित रमेश का मैसेज, डमराव बिहार से डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी का मैसेज, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य और परमानंद का मैसेज, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी, आसमा खातून अंसारी और इकबाल मस्तान, और अब पूरे गांव का नाम आप शामिल मत करिएगा एक मेल पर, ऐसा मत करिए दोस्त, क्योंकि एक ही मेल में इतने सारे नाम होते हैं तो फिर एक मेल से अगले मेल तक पहुंचने में बहुत समय लगता है। नापकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर और कुमार गौरव मंदुरकर का मैसेज, और हमें लिखा है वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा ने, अनवर साबरी, ये देखिए दोबारा मैसेज, और सहारनपुर चंद्र नगर, सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग का मैसेज, और इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस हैं लेकिन वक्त थोड़ा सा कम रहता है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप का मोहाली चंडीगढ़ से, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, पेटा बजाज का मैसेज, और हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है फिर से अनिल मोहन, उषा मोहन, टीलो नायक, मधु नायक का पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से मैसेज, और राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी का जैन मंदिर वाली कली कुरावली, मुझे लग रहा है मैंने पढ़ लिया है, राजकुमार दूधी, प्रमोद कुमार दूधी, पुष्पेंद्र कुमार गांव फ्रांसी हिसार से हमें लिख रहे हैं, और साथ ही राशिद हुसैन का फिर से मैसेज, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया का मैसेज है, और हमें लिखा है भारत भूषण, अंजु श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति पौरुष का व्हाइट फील्ड बेंगलुरु से मैसेज है, और ढेर सारे अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से हमें लिख रहे हैं, कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज, संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का, मोहम्मद अख्तर का मैसेज, कहाँ से नाम नहीं लिखा, और ये मैसेज हमें लिखा है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा ने दतरेंगी से, साथ ही ये मैसेज बेबी आलिया, आयान बाबू, नौशाद सलमानी, निसार सलमानी का धनौरी तेलीवाड़ा उत्तराखंड से, और सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सरिता, सुजाता, संजू, लला, पवन गौड़ और योगेंद्र नायक कासगंज भी फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौराहा से लिख रहे हैं, और अगर थोड़ा सा और पता लिख देते तो मैं आपके घर ही पहुंच जाती, मोहम्मद नहीं ये नाम है जगदीश कुमार, राहुल, ऋतिक का और नांगलोई से हमें ये मैसेज भेज रहे हैं, और साथ ही ये मैसेज हमें मिला है योगेश शर्मा, निवान, मीना, राज शर्मा, मैंडी और सौरव का साइना के साथ, भाई इतना अगर चिपका के नाम लिखेंगे ना तो फिर पढ़ना मुश्किल होगा, एक के ऊपर एक नाम ऐसे लिखें ताकि मैं उन्हें पढ़ पाऊँ। इसके अलावा हमारे पास ये मैसेज पहुंचा है आदर्श नगर मलौट पंजाब से, और हमें लिखा है किसने ये बता दूं, जगदीश कुमार ने फिर से मैसेज भेज दिया, देखिए आप, चलिए अब मैं नाम नहीं पढ़ूंगी, अब मैं जल्दी से आपको गीत सुनाऊंगी, अफरोज शेख नेमुआ सुपौल बिहार से हमें इस गीत की फरमाइश भेज रहे हैं, तो ये रहा आपके लिए।

और अब कुछ और मैसेज। शेरवानी स्कूल गंजरुणवाड़ा उत्तर प्रदेश से आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी का मैसेज, और शमसुल कमर राही, शाइना फातिमा, अदनान फैजान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी का गंजरुणवाड़ा से मैसेज, धनोरी विटाली तहसील नांदुरा जिला बुल्डाना महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल का मैसेज, और हमें लिखा है चिन्मय महतो, रेखा महतो, शिवांश मंडल, कुमार सौरभ महतो ने कदमा जमशेदपुर से, अलीका डबवाली से बसंत सिंह चन और राजकुमार कुलदीप गांधी का मैसेज, राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन, गोटना जैन, मुल्लापुर दाखा से हमें लिख रहे हैं, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट का मैसेज, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल और सोनू तमन्ना भाटिया का हमें मैसेज पहुंचा है जमशेदपुर से, और हमें लिखा है ये मुकेश जतिन, अनन्या, ममता, पूनम, रितिका, सुमन ने कहां से नहीं मिल रहा मुझे, और इसके अलावा प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल, यशस्वी का छत्तीसगढ़ पलारी से हमें मैसेज पहुंचा, वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान, अजीम खान का मैसेज, और नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद का मैसेज हमें मिला है रामपुर महाराष्ट्र फातिमा कॉलोनी से, और हमें लिखा गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल और जैनब मुजावर ने, और इसके अलावा मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का मैसेज, अशोक दले, सविता दले, अनिकेत, ऋषिकेश, जीविका का मैसेज, कुम्भार गली श्रीरामपुर से, और पुनावले पुणे से अजय सोनवने, और करिश्मा अविका विशाखा सोनवने का मैसेज, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुलाल सिंह और अविराज का मैसेज, लोहगढ़ ठाकुरावाला से, और हमें लिखा है कोपर गांव से सुरेश मालोद, वर्षा मालोद ने, और शेव गांव से श्रीराम गोंदली और उषा गोंदली का मैसेज हमें मिला है, और ये मैसेज हमें लिखा है सुनील, सुषमा, अनन्या, राजवीर गायकवाड़ ने, और साथ ही हमारे पास ये मैसेज नवीन भाटिया का मोतीनगर से पहुंचा है, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी का मैसेज पहुंचा है श्रीगंगानगर राजस्थान से। मैसेजेस कुछ और भी हैं लेकिन वक्त अब नहीं बचा है तो कोशिश करती हूं एक और गीत आप तक पहुंचा दूं, SP गोयल और रेणु गोयल की पसंद, ये खूबसूरत गीत आपके लिए लता जी की आवाज़ में, ये रहा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार को मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स

0: सहयोग और परिवर्तन। भारत के ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक शुरू होगी। दो दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा किया। श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने आवास पर भारत सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में अवसंरचना तथा संपर्क, सुरक्षा, विदेश मामलों और शासन प्रणाली से जुड़े मंत्रालयों तथा विभागों के भविष्य की कार्यसूची पर चर्चा की गई।
1: बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि अधिकारियों के बीच अनौपचारिक बातचीत और टीम भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। श्री मोदी ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच ज्यादा जुड़ाव की बात कही। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को और मजबूत करने और उसे वैश्विक स्तर पर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के सचिव तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन न मिलने पर बढ़ते इसे दबाव का संकेत बताया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में कल तक तेज हवा चलने की संभावना व्यक्त की गई है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने और हल्की वर्षा का अनुमान है। केरलम के कई तटीय क्षेत्रों में आज ऊंची लहरों से समुद्र का जलस्तर बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र ने चेतावनी दी है कि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलप्पुरा, एर्नाकुलम, मालप्पुरम, कोषिकोड, कन्नूर और कासरगोड के तटों पर आज सुबह 11:30 बजे तक 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की संभावना है। बैडमिंटन में आज नई दिल्ली में हो रही BWF विश्व चैंपियनशिप 2026 में भारतीय खिलाड़ी पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला चीन के तीसरी वरीयता प्राप्त लियांग वई खेंग और वांग चांग से होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: यह है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम मेरा वजूद और उसके बाद आप सुनेंगे तस्वीर। जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ।
1: हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आनंद
2: और मैं अदिति।
1: हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोग्राम मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। मेरा वजूद के इस प्रोग्राम

0: हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन रियल एस्टेट के रेफरल प्लेटफॉर्म से जुड़कर अपना वजूद बना सकते हैं,
1: क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल एस्टेट के लाभ से जोड़ना है। अब आप चाहे हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो या रिटायर्ड पर्सन, जब ऑनलाइन का है जमाना तो ऑनलाइन से ही कमाना सही है ना?
0: दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। दोस्तों, फैज अहमद फैज साहब का लिखा हुआ यह खूबसूरत शेर संदेश है हर उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी में नाकामयाबियों का समय देख रहे हैं।
1: उनका कहना है कि हो सकता है इंसान को अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए समय तो लग सकता है, लेकिन उसे नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारे देश के महान डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी एक ऐसे ही इंसान थे जिन्होंने अपने बचपन की जिंदगी में बहुत दुख देखा।
0: डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। घर में बिजली तक नहीं थी। वे रात में पढ़ाई करने के लिए केवल एक घंटे जलने वाली लालटेन का इस्तेमाल करते थे। सुबह उठकर मीलों पैदल चलना और परिवार की मदद के लिए अखबार बांटना उनका रोज का काम था।
1: लेकिन उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से कभी जी नहीं चुराया। पढ़ाई में कामयाबी हासिल करने के बाद भी जब एयरफोर्स के इंटरव्यू में 9वें स्थान पर रहने के कारण चयन नहीं हुआ, तो भी उन्होंने हार नहीं मानी और विज्ञान को अपनी राह चुनी। विज्ञान के प्रति लगन और ईमानदारी के दम पर देश के मिसाइल मैन और महान राष्ट्रपति बने।

0: कौन जानता था कि मेरे मल्टीटास्किंग स्किल्स एक दिन मुझे कमाई भी कराएंगे।
1: न मेरे कोई दुकान, न मेरा कोई ऑफिस, मेरा मोबाइल है मेरी दुकान,
2: मेरा वजूद। बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
3: कहते हैं कि मेहनत को जिसने अपनी पहचान बना लिया, समझो कामयाबी को उसने अपना मेहमान बना लिया। दोस्तों, कामयाब तो अपनी जिंदगी में सभी होना चाहते हैं, मगर कामयाब होने के लिए, अपने खुद की पहचान बनाने के लिए जिस मेहनत और लगन की जरूरत होती है, उसे कम ही लोग कर पाते हैं।
2: कोई कहता है कि उसे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, तो कोई कहता है कि वो बिजनेस करना चाहता है मगर पैसे नहीं है, तो कोई चाहता है कि उसे कोई ऐसा काम मिल जाए जो घर बैठे ही किया जा सके। यकीन मानिए, ऐसा काम तो है, जरूरत है तो बस आपके समझने की, उसके बारे में जानने की।
3: क्योंकि कोई भी काम करने वाला और अपनी पहचान बनाने की चाहत रखने वाला आदमी बेकार नहीं।

0: चलता, इसलिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखें, अपनी हिम्मत को जगाएं, अपने मतलब का वो काम चुनें जहां आपको पैसे भी मिलें और आपकी पहचान भी,
1: ताकि आप अपने घर में और अपने इस समाज में आप सिर उठाकर चलें और कह सकें, अब मैं बेकार नहीं हूं, अब मेरी भी एक पहचान है, मेरी भी अपनी एक शख्सियत है। और याद रहे कि कामयाबी इस बात की मोहताज नहीं होती कि आप

0: सारा दिन बस नाश्ता लंच और डिनर, सबकी जरूरतें पूरी करते करते जाने कब मेरा खुद का वजूद कहीं खो गया। क्या मेरी पहचान बस यहीं तक है?
1: मेरा वजूद बताओ और कमाओ, आज ही रजिस्टर करें www.मेरावजूद.com पर।
2: संघर्ष और सफलता की सबसे बड़ी मिसाल ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी के 5 साल अपने सपनों को दे दें तो आपकी कामयाबी आने वाले 50 सालों तक आपका नाम लेती रहेगी। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए।
1: नेपोलियन हिल ने भी कहा था कि हारना इस बात का संकेत नहीं है कि आप असफल हैं, बल्कि इसका अर्थ है कि अभी आप मजबूत होना सीख रहे हैं। इस तरह अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि मैं धीरे धीरे चलता हूँ, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटता।
2: नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है, इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। कामयाब होने का संदेश ये है कि सफलता किसी जादुई चमत्कार से नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत, पक्के इरादे और असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ने से मिलती है।
1: तभी तो महान लोगों का कहना है कि अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान दें और तब तक प्रयास करते रहें जब तक सफलता न मिल जाए, क्योंकि सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं,
2: सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले

0: हम गृहिणियों को मोहल्ले की हर खबर रहती है ना, कौन सा घर बिका, कौन सा खाली है, बस यही जानकारी मैंने मेरा वजूद पर डालना शुरू की। अब मैं बिजनेस भी संभालती हूँ।
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मेरा वजूद,
1: बताओ और कमाओ। इसे आप अपना हाई अर्निंग साइड इनकम का इनोवेशन भी कह सकते हैं। बस आपको जेन्युइन प्रॉपर्टी परचेजर सेलर की डिटेल मेरा वजूद एग्जीक्यूटिव के साथ शेयर करनी है।
2: ना कहीं आना और ना ही कहीं जाना, बाकी की सेल परचेज देखेगी हमारी कंपनी और फिर आपका फायदा ही फायदा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें मेरा वजूद 9355-387-21 पर।
3: इतनी परेशान क्यों लग रही हो?
4: मन करता है कि तुम्हारा हाथ बटाऊं, पर मुझे नौकरी देगा कौन?
5: आज तुम जैसी हजारों महिलाएं घर बैठे अपनी नॉलेज और नेटवर्क से लाखों कमा रही हैं।
4: कैसे?
1: मेरा वजूद, बताओ और कमाओ। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर। दोस्तों, प्रोग्राम आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि मेरा वजूद का लक्ष्य ही हर व्यक्ति को रियल स्टेट के लाभ से जोड़ना है।
2: जीवन में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछकर हम फिर से खड़े हो जाते हैं।
1: हमारा पता है मेरा वजूद, बताओ और कमाओ, सी ब्लॉक मार्केट 16, सेक्टर 41, नोएडा। आज ही रजिस्टर करें www.meravajood.com पर।
2: एक बार फिर आज ही के दिन शुक्रवार सुबह 11:10 FM गोल्ड पर
1: हम आपके साथ होंगे लेकर प्रोग्राम मेरा वजूद,
2: बताओ और कमाओ। तब तक के लिए आनंद
1: और अदिति को इजाजत दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

तो भाई हम आ गए हैं लेकर तस्वीर, और आज की तस्वीर के सफर में हम आपको ले चलेंगे एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर पर, जिसे एबट माउंट के नाम से जाना जाता है। एबट माउंट एक छोटा और सुरम्य हिल स्टेशन जो उत्तराखंड में छुट्टियां बिताने के लिए एक आदर्श प्लेस है। प्रकृति की सुंदरता से भरपूर काली कुमाऊं क्षेत्र के चंपावत जिले में स्थित ये हिल स्टेशन प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है, जो शांत और निर्मल वातावरण में सुकून भरे पल बिताना चाहते हैं उन लोगों के लिए। एबट माउंट 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ एक खूबसूरत औपनिवेशिक काल का चर्च है। घना जंगल और विशाल हिमालय का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ कई शानदार पगडंडियां और पैदल मार्ग भी हैं जो कई खूबसूरत जगहों तक ले जाते हैं। ये पंचेश्वर का आधार भी है, जहाँ सरयू और महाकाली नदियों के संगम पर मछली पकड़ने का आनंद लिया जा सकता है। तो जुड़े रहिए तस्वीर के इस खूबसूरत सफर में, मैं आपकी दोस्त आज रेखा क्रिस्टल वॉइस ले चलूंगी आज आपको माउंट एबट माउंट की तस्वीर हम उकेरेंगे, और ये खूबसूरत हिल स्टेशन जो कि उत्तराखंड में है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं इस प्यारे से गीत से।

0: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, आज आप और हम पहुंचे हैं एबट माउंट उत्तराखंड के इस खूबसूरत हिल स्टेशन की सैर पर, जो उत्तराखंड में बहुत खास है यहां आने वालों के लिए। ये हिल स्टेशन प्रकृति की सुंदरता और शहर की भागदौड़ से दूर सुकून का आनंद लेने के लिए जाना जाता है। और इसके अलावा ये कपल्स के लिए भी एक बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहां पर एकांत में साथ बिताने के लिए कई खूबसूरत पल आपको मिल सकते हैं। ये ट्रैकिंग, बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। एबट माउंट एक सुरम्य पुराना शहर है जो उत्तराखंड के चंपावत जिले के काली कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ एक भव्य गिरजाघर और पहाड़ी पर बने 13 एकांत कॉटेज के जरिए बीते ब्रिटिश औपनिवेशिक युग का आकर्षण देखा जा सकता है। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में एक ब्रिटिश व्यवसायी जॉन हेरोल्ड एबट द्वारा स्थापित एबट माउंट एक ऐसा स्थान है जो लगभग पहले जैसा ही है। समुद्र तल से 7,000 फीट की ऊंचाई स्थित ये बर्फ से ढकी हिमालय के मनमोहक नजारे पेश करता है और शांत वातावरण में पक्षियों की चहचहाट हल्की हवा के साथ मन को शांति देती है। यहाँ साल भर मौसम सुहाना रहता है, जो इसे ट्रैकिंग, मछली पकड़ने और बर्ड वॉचिंग के लिए, फोटोग्राफी जैसी एक्टिविटीज के लिए एक बेस्ट प्लेस बनाता है। वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध और चीड़ और देवदार के घने जंगलों से घिरा एबट माउंट शहर शोरगुल से एकदम दूर है और ये जरूर देखने वाली जगह है। सचमुच अगर आप भी रोजाना की दौड़ भाग से, शहर भर की इस दौड़ धूप से तंग आ चुके हैं, तो फिर एक बार जरूर प्लान कीजिए एबट माउंट की यात्रा। कैसा मौसम है यहाँ का, कब जाना चाहिए, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको, लेकिन इस प्यारे से गीत के बाद।

0: NCREPE से गुजरने वाले सभी श्रद्धालुओं एवं यात्रियों को पावन श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। कृपया प्रशासन द्वारा निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए तुरंत डायल करें 1033। आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प।
1: तो भाई, मैं आपको बताने वाली थी कि एबट माउंट में कौन सा मौसम है जब आपको घूमने के लिए जाना चाहिए। वैसे तो एबट माउंट का जो मौसम है वो साल भर सुहावना रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। सर्दियों में यहाँ बर्फबारी आम बात है और जनवरी फरवरी के महीनों में आप पूरे हिल स्टेशन को बर्फ की चादर से ढके हुए देख सकते हैं। और एबट माउंट में सर्दियाँ कड़ाके की ठंड वाली होती हैं, तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, कभी कभी इससे भी नीचे, लेकिन फिर भी लोग यहाँ रहना पसंद करते हैं और हर चीज को ढक देने वाली बर्फबारी का आनंद लेते हैं। गर्मियों के मौसम की बात करूं तो यहाँ का मौसम सुहावना होता है और गर्मियों में औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन हवा की वजह से मौसम काफी सुहाना हो जाता है और भीषण गर्मी के मौसम में भी लोगों को जो यहाँ दिल्ली में गर्मी में तरस रहे होते हैं थोड़ी सी ठंड के लिए, वहां पर लोगों को ऊनी पतली परतों वाले कपड़े पहनने की जरूरत पड़ती है। मानसून की बात करें तो तापमान अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम है और औसत तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। हालांकि राज्य के अन्य हिस्सों की तुलना में यहां भारी बारिश नहीं होती, फिर भी लैंडस्लाइड्स और

कहीं ना कहीं बाधित होने का खतरा रहता है। इसलिए मानसून में यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम का पूर्वानुमान आपको जरूर ले लेना चाहिए। और भी बहुत कुछ है इस बारे में, इस जगह के बारे में जानने को। वैसे आपको ये बता दूं कि एबट माउंट में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। एबट माउंट जो एक छोटा सा पहाड़ी इलाका है, अपने पर्यटकों को बहुत कुछ देता है। ये जगह प्राकृतिक सुंदरता, औपनिवेशिक शैली की इमारतों और मनमोहक ट्रैकिंग रास्तों के लिए प्रसिद्ध है। एबट माउंट के आसपास कुछ खूबसूरत जगह भी हैं जो प्रकृति प्रेमियों के लिए दर्शनीय स्थलों की सैर को और भी यादगार बना देती हैं। इन्हीं में से एक जगह है पंचेश्वर। एबट माउंट से लगभग 47 किलोमीटर दूर पंचेश्वर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। पंचेश्वर में चोमू मंदिर और इसका वार्षिक मेला बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ मछली पकड़ने के लिए भी इस जगह को जाना जाता है, जो सरयू और महाकाली नदियों के संगम पर स्थित है और इसे पवित्र माना जाता है। मायावती आश्रम है यहाँ पर, एबट माउंट से 16 किलोमीटर दूर पुराने चाय बागानों में स्थित है और ये खास तौर से भगवान शिव के भक्तों के लिए है, जो यहाँ पर उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। निर्मल प्रकृति के बीच ध्यान करने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। और भी बहुत कुछ है देखने के लिए, जरूर बताऊंगी, लेकिन इस गीत के बाद।

तो मैं आपको बता रही थी कि भाई आपको यहाँ एबट माउंट में और कहाँ कहाँ जाना है घूमने के लिए। तो बता दूं कि यहाँ पर एक वनसुर का किला है। लोहाघाट से होकर यात्रा करते समय एबट माउंट से लगभग 25 किलोमीटर दूर वनसुर का किला स्थित है और ये किला राक्षस वनसुर की राजधानी माना जाता है, जिसे भगवान कृष्ण ने पराजित किया था। इस किले का धार्मिक महत्व भी है और यहाँ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन करने आते हैं। लोहाघाट एक जगह है। लोहाघाट उत्तराखंड राज्य के चंपावत जिले में स्थित एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। एबट माउंट से 5 किलोमीटर दूर स्थित ये प्राचीन शहर मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और अपने ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व की वजह से पर्यटकों से भरा रहता है। ये शांत छोटा सा शहर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ का शांत वातावरण, चीड़ और बलूत के पेड़ और हरी भरी हरियाली लोगों को इस रमणीय स्थान की ओर आकर्षित करती है। हाँ, एक और चीज है जो यहाँ आपको देखनी चाहिए एबट माउंट में। एबट माउंटेन के प्रमुख आकर्षणों में से एक यहाँ के मनमोहक सूर्योदय और सूर्यास्त के नज़ारे हैं। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों को रोशन करती सूर्य की पहली किरणें देखना एक जादुई अनुभव है जो यहाँ आने वालों पर अमिट छाप छोड़ता है। जैसे ही शाम ढलती है, आकाश जीवंत रंगों के कैनवस में बदल जाता है। पहाड़ों की पृष्ठभूमि में एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य आपके सामने होता है। तो आपको अगर मौका मिले तो ज़रूर सनसेट या सनराइज का मजा यहां पर लीजिएगा। साहसिक गतिविधियां भी आप कर सकते हैं, जैसे कि एबट माउंटेन न केवल अपने बेदाग प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है बल्कि ये रोमांच के शौकीन लोगों के लिए स्वर्ग जैसा है। ट्रैकिंग के शौकीन लोग शिखर तक ले जाने वाले रोमांचक रास्तों पर निकल सकते हैं जो उन्हें प्रकृति के बीच एक अद्भुत अनुभव प्रदान करते हैं। ट्रैकिंग मार्ग कंपैरेटिवली आसान है, जिससे ये शुरुआती और अनुभवी दोनों तरह के ट्रैकर्स के लिए सुलभ है। आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए एबट माउंट हरे भरे परिदृश्य के बीच बसे सुंदर मंदिरों और तीर्थ स्थलों से सजा हुआ है। ये पवित्र स्थल ध्यान और आत्मनिरीक्षण के लिए एक शांत जगह देते हैं, जिससे यहाँ आने वाले शांत वातावरण में अपने अंतर्मन से जुड़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर शांति के लिए भी अगर जाने का मन हो तो जरूर जा सकते हैं। प्रकृति की सैर कर सकते हैं आप। एबट माउंट प्रकृति के विविध रंगों से भरा हुआ है और आप यहाँ पर पूरी तरह से डूब सकते हैं। और ऐसा करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि इस जगह के चारों ओर इत्मीनान से आप सैर कीजिए। इस छोटे से पहाड़ी इलाके में कुछ रास्ते हैं जो आपको शानदार नज़ारों वाले कुछ अनोखे स्थानों तक ले जाते हैं। अपने परिवार या फिर जीवन साथी के साथ सैर का आनंद आप यहां ले सकते हैं। मरोड़ा खान से होकर गुजरने वाला 9 किलोमीटर का मार्ग एक अनूठा ट्रैक है और ट्रैकिंग के लिए भी बेस्ट है। फोटोग्राफी के लिए भी आपको यहां पर बहुत कुछ मिलेगा। अपना कैमरा तैयार रखिए और अपने होटल के कमरे से निकलते ही बाहर कैमरे से आप यहाँ के नज़ारों को कैद करने के लिए बहुत कुछ आपको मिलेगा। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, स्थानीय लोग, आकर्षक घर, इमारतें और चर्च देखने को मिलेगा जो फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन जगह हो सकती है। बर्ड वॉचिंग आप यहाँ कर सकते हैं। हर तरह के पक्षी जो कि हिमालय पर्वतमाला के देशी पक्षी और प्रवासी पक्षी यहाँ पर आपको आसानी से मिलते हैं और एबट माउंट में इनमें से एक है। यहाँ की ये खास चीज़, यानी कि अगर मैं बात करूँ, सुंदर पक्षियों से भरा हुआ यहाँ का नज़ारा जो अक्सर नाशपाती और अखरोट के पेड़ों पर बैठे हुए आपको दिखाई दे जाते हैं, तो आपको इनका भी आनंद ज़रूर लेना चाहिए। मछली पकड़ने की बात जैसी मैंने की, तो मानसून के महीने में यहाँ पर महसीर मछली पकड़ने का आनंद भी आप ले सकते हैं जो कि पंचेश्वर में सरयू और काली नदियों के संगम पर आपको आसानी से मिलता है। ठहरना कहाँ है ये भी बता दूँ। उत्तराखंड में एबट माउंट में अभी भी कम प्रसिद्ध क्योंकि ये हिल स्टेशन है, तो ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। इस हिल स्टेशन पर कुछ ही कॉटेज हैं जो ठीक ठाक रहने की सुविधा देते हैं। पास के अल्मोड़ा में बड़ी संख्या में होटल रिजॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे। यहाँ कई ऑप्शंस हैं और अलग अलग बजट के मुताबिक यहाँ पर ये उपलब्ध हैं, तो आपको जैसा भी बजट हो उसके अनुसार यहाँ पर जरूर अपनी तैयारी करके जाना चाहिए।

भी। अब ये भी जान लें कि पहुंचना कैसे है। हाँ, तो भाई एबट जो है वो, एबट माउंट जो है वो सड़क मार्ग से बाकी शहरों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है। फिर भी अगर आप हवाई जहाज से या ट्रेन से यहाँ जाने का सोच रहे हैं तो ये एक ज़्यादा अच्छा विकल्प नहीं होगा। हालांकि सबसे अच्छा विकल्प दिल्ली या हल्द्वानी से टैक्सी किराए पर लेना या बस से सवार होकर जाना है। हवाई जहाज से अगर आप जाएं तो एबट माउंट से करीबी हवाई अड्डा पंतनगर में है, जो लगभग 138 किलोमीटर दूर है, और ये हवाई अड्डा दिल्ली से अच्छी तरह से कनेक्टेड है और यहाँ हर दिन नियमित उड़ानें संचालित होती हैं। पंतनगर से एबट माउंट पहुँचने के लिए टैक्सी किराए पर आपको लेनी होगी। रेल से अगर आप जाना चाहें तो रेल परिवहन की बात भी बता दूं आपको, दो स्टेशन हैं जहां पर आप उतरकर टैक्सी लेकर एबट माउंट पहुंच सकते हैं, और इनमें से एक काठगोदाम स्टेशन है जो करीब 95 किलोमीटर की दूरी पर है, और दूसरा तनकपुर स्टेशन है जो एबट माउंट से 185 किलोमीटर के लगभग की दूरी पर है। सड़क से अगर आप जाना चाहें तो उत्तराखंड के सभी प्रमुख स्थलों से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये स्थान काफी दूर है। आप आरामदायक यात्रा के लिए उत्तराखंड रोडवेज की सेवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप काठगोदाम हल्द्वानी से एबट माउंट तक पहुंचने के लिए टैक्सी ले सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि सांस्कृतिक विरासत का एक खूबसूरत संगम भी आपको यहाँ पर मिलेगा प्रकृति के साथ, चाहे आप रोमांच की तलाश में हो, आध्यात्म की तलाश में हो, या बस प्रकृति में डूब जाना चाहते हो, एबट माउंट पहुंच जाइए। और भी बहुत कुछ है वैसे तो जानने को, अगर वक्त बचा तो बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वक्त बचेगा। पर हाँ, एक छोटी सी चीज आपको बताती चलूं कि यहां पर अगर आप जाते हैं तो कुमाऊनी संस्कृति, परंपराओं और ब्रिटिश काल इतिहास का एक शांत सुंदर संगम आपको यहां मिलेगा। संस्कृति जो है वो यहां की प्रकृति, लोक पर्वों और पहाड़ी जीवन शैली से गहराई से जुड़ी है, और यहां का कुमाऊनी पहनावा जो कि महिलाएं पिछोड़ा यानी दुपट्टा और घाघरा चोली और पुरुष कुर्ता पैजामा सदरी पहनना पसंद करते हैं। खान पान की बात करूं तो यहां पर पहाड़ी व्यंजन पौष्टिक होते हैं जो आपको आसानी से मिल जाएंगे। दाल की भरी हुई रोटियां, बालूशाही या गहत रोटी, भट्ट की चुरकानी और मंडवे की रोटी आपको यहां पर मिलेगी, तो इसका स्वाद जरूर चखिएगा। आपको कुमाऊनी जो परंपरा है, जो यहां के लोग हैं, जो स्वाद है, उसको चखने का मौका मिलेगा। भाषा की बात करूं तो कुमाऊनी भाषा और हिंदी बोली जाती है यहां पर, और स्थानीय लहजे की मिठास आपको उसमें देखने को मिलेगी। मेले और त्योहार, लोक पर्व यहां पर बहुत उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इगास, हरेला, फुलदेई और नंदा देवी राजात जैसे त्योहार पूरे उल्लास से यहाँ लोग मनाते हैं। मेलों का आयोजन होता है, छोलिया नृत्य और झोड़ा चांचरी नृत्य यहाँ पर किए जाते हैं, जो आपसी भाईचारे और उत्सव धर्मिता के प्रतीक हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर खरीदना क्या है वो भी जल्दी से बता दूं, मसाले, राजमा और गहत जैसी स्थानीय दालें आप यहाँ से खरीद सकते हैं, और इसके अलावा हाथ से बुने ऊनी वस्त्र जो कुमाऊं क्षेत्र के कारीगरों द्वारा तैयार किए आते हैं, गर्म स्वेटर, शॉल और स्कार्फ आप यहां से खरीद सकते हैं। पारंपरिक मिठाइयां खरीद सकते हैं, लोहाघाट बाजार की स्थानीय मिठाई भंडार से आप यहां की पारंपरिक मिठाइयां खरीद सकते हैं, और जैविक उत्पाद और हर्बल उत्पाद भी आपको यहां मिल जाएंगे, जैसे पहाड़ी शहद, बुरांश का जूस और स्थानीय जड़ी बूटियां। तो बहुत कुछ है यहां पर करने के लिए, जब भी मौका मिले पहुंच जाइए एबट माउंट, क्योंकि ये जगह आपको बुला रही है अगली छुट्टियों में। वेल, फिलहाल एक और खूबसूरत गीत आप तक पहुंचाती हूं और उसके बाद आपसे लूंगी विदा, क्योंकि अब वक्त तस्वीर में बहुत ज्यादा नहीं बचा है, लेकिन फिलहाल ये गीत आप तक।

और इसी के साथ मैं आपकी दोस्त आरजे रेखा क्रिस्टल वॉइस लेती हूँ आज के लिए आपसे विदा। फिर किसी रोज किसी और सफर में मुलाकात होगी। इस गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार और आगे भी कार्यक्रम है, तो जुड़े रहिएगा।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए

समाचार सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्षों में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पत्र के साथ एक पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर

पोस्ट साझा की। पत्र में श्री वैष्णव ने बताया कि शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर के रास्ते जम्मू तवी और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को मंजूरी दे दी गई है। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय डिजिटल अरेस्ट साइबर धोखाधड़ी गिरोह का भंडाफोड़ कर पंजाब और राजस्थान से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारियां भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त कर्नल से 15 लाख रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में की गई है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 स्मार्टफोन और 6 सिम कार्ड भी बरामद किए हैं। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी की अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में हैं। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। जम्मू कश्मीर में स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने कर्मचारियों के लिए व्यापक स्थानांतरण नीति अधिसूचित की है। इसका उद्देश्य तबादलों और नियुक्तियों में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता लाना है। सरकार ने कहा है कि इस नीति का समग्र उद्देश्य विशेष रूप से दूरस्थ और कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में मानव संसाधनों का संतुलित उपयोग, कर्मचारियों का समान वितरण, कुशल प्रशासन और निर्बाध शैक्षणिक कार्य संचालन सुनिश्चित करना है। घरेलू शेयर बाजार में आज मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77 अंक बढ़कर 77,615, जबकि निफ्टी 21 अंक की वृद्धि के साथ 24,253 पर कारोबार कर रहा था। एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम में रात 9:30 बजे शुरू होगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत आज जयपुर में ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में पर्यटन क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, मौसम कुदरत का आईना है जो हर पल अपना रंग बदलता है। कभी धूप की गर्मी तो कभी बारिश की ठंडक, कभी सर्द हवा का एहसास। मौसम सिर्फ बाहर का नहीं बदलता बल्कि हमारे मन और सेहत पर भी असर डालता है, इसीलिए हर मौसम का स्वागत कीजिए। जी हाँ, और इसी के साथ हम भी आपका स्वागत करते हैं, यानी कि आप सबका घर आंगन के प्यारे से इस शो में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट सिमरन कौर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप हमें सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और इंद्रप्रस्थ के चैनल 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्ज़ पर। खूब ढेर सारी जानकारियों के साथ आपसे आगे जुड़ेंगे, तब सबसे पहले ये खूबसूरत सा गीत आपकी नजर।

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में गीत, फिल्म थी आशा। और आज आप सभी जानते हैं कि हमारा विशेष कार्यक्रम होता है एक कदम बुजुर्गों की ओर। और आज के दिन खास तौर पर ये विशेष कार्यक्रम के साथ साथ आज का दिन जो है वो भी बहुत खास है, क्योंकि आज बहुत सारे दिन हैं खास, लेकिन सबसे पहले खास बात हम करेंगे कि आज है वरिष्ठ नागरिक दिवस। जब हम बात करते हैं उन अनमोल लोगों की जिनके अनुभव हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है, तो हमारे हैं वो वरिष्ठ नागरिक। वरिष्ठ नागरिक दिवस हमें याद दिलाता है कि हम उन केवल वर्षों की गिनती नहीं, बल्कि अनुभवों, संघर्षों और सीख की एक भरी खूबसूरत यात्रा है। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी ने परिवार को संभालने और बच्चों को संस्कार देने और समाज को बेहतर बनाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। आज ज़रूरत है कि हम उन्हें केवल सम्मान ही ना दें, बल्कि उनका साथ भी निभाएं, उनके साथ कुछ समय बैठकर बातें करें, पुरानी यादें सुनें, उनकी पसंद नापसंद जानें और सबसे ज़रूरी बात उन्हें महसूस कराएं कि वे आज हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। कई बार बुजुर्गों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत दवाइयों या सुविधाओं की नहीं, बल्कि अपनों के समय प्यार की होती है। आपका कुछ मिनट उनके साथ बैठना उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकता है। तो वरिष्ठ नागरिक दिवस पर आइए एक छोटा सा संकल्प लें। हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी बात ध्यान से सुनेंगे और उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे, क्योंकि जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है वहाँ अनुभव की रोशनी और संस्कारों की खुशबू हमेशा बनी रहती है। तो वरिष्ठ नागरिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, और अपने बुजुर्गों को सम्मान दें, उनका हाथ थामें और कहें आप हमारे परिवार की ताकत हैं और आज भी और हमेशा रहेंगे।

और दोस्तों, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा कि आज बहुत सारे दिवस हैं, तो पहले बात करते हैं आतंकवाद के पीड़ितों के स्मरण अंतर्राष्ट्रीय दिवस की। आज हम एक ऐसे दिवस की बात कर रहे हैं जो हमें आतंकवाद के उन पीड़ितों की याद दिलाता है जिन्होंने हिंसा और आतंक के कारण अपने जीवन, अपने प्रियजनों को और अपने सपनों को खो दिया। इस दिन हम उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने आतंकवादी घटनाओं में अपनी जान गंवाई, और उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं जो आज के इसके शारीरिक और मानसिक प्रभावों से जूझ रहे हैं। हमें अपने समाज में शांति, सद्भाव और आपसी सम्मान और भाईचारे की भावना को मजबूत करना बेहद जरूरी है। और साथ ही आज विश्व कवि दिवस, एक ऐसा दिन जो हमें कविता की उस खूबसूरत दुनिया से जोड़ता है जहां शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते बल्कि भावनाएं, सपने और संवेदनाएं बन जाती हैं। कविता कभी खुशी की आवाज बनती है तो कभी दर्द को शब्द देती है, कभी प्रेम का इजहार करती है तो कभी प्रकृति की सुंदरता का वर्णन, और कभी समाज को एक नई सोच देती है। कविता की सबसे खास बात यही होती है कि ये कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाती है, और वहीं दो पंक्तियां हमारे दिल की पूरी कहानी भी बयां कर देती है।

अपना कारोबार शुरू करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक विचार को हकीकत में बदलने, जोखिम उठाने और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी अवसर पैदा करने का साहस है। घर से शुरू किया गया छोटा सा काम भी मेहनत, ईमानदारी और सही सोच के साथ एक बड़े उद्यम का रूप ले सकता है। हम अपने भीतर के उस विचार और हुनर को पहचानें जिसे हम अब तक टालते आए हैं। छोटा कदम उठाइए, सीखते रहिए और अपने सपनों को अवसर में बदलिए। और आज बात करते हैं लेखिका इसमत चुगताई की जयंती की। आज हम हिंदी उर्दू साहित्य की ऐसी बेबाक और सशक्त लेखिका इसमत चुगताई को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपनी कलम से समाज की उन सच्चाइयों को सामने रखा जिन पर अक्सर बात करने से लोग कतराते थे। उन्होंने आम जिंदगी और खासकर महिलाओं के अनुभवों को साहित्य के केंद्र में लाकर एक नई पहचान दी। साहित्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि समाज को आईना दिखाने के बदलाव की शुरुआत करने का माध्यम भी हो सकता था।

एक कदम बुजुर्गों की ओर। जी हाँ, बुजुर्गों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जो एक बड़े पेड़ के समान होते हैं वो हमारे बुजुर्ग होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जो मुश्किलों के साथ खड़े होते हैं। वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनकी छाया में सब सुरक्षित होते हैं। जो ढाल बन के खड़े होते हैं वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जिनसे सब रिश्ते नाते होते हैं वो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जिनसे सब खुश होते हैं वो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे जीवन में उन अनमोल लोगों की, जिनकी अनुभव और आशीर्वाद की हमें बहुत ज़रूरत है, वो हमारे लिए हमारे बुजुर्ग ही तो हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम अक्सर अपने बुज़ुर्गों के लिए समय निकालना भूल जाते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए, जिन्हें कभी हमारी छोटी सी मुस्कान और खुशी देती थी, क्या आज हमारी कुछ मिनटों की बातचीत उन्हें खुशी नहीं दे सकती? क्योंकि बुज़ुर्गों को सिर्फ देखभाल नहीं बल्कि सम्मान, अपनापन और साथ की भी ज़रूरत होती है। उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए, उनके पुराने किस्से पूछिए और उनके अनुभवों से सीखिए। याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ इंसान की ज़रूरतें कम नहीं होती बल्कि प्यार और अपनापन पाने की चाह और भी बढ़ जाती है। तो आइए आज हम संकल्प लेके अपने बुजुर्गों को परिवार का बोझ नहीं बल्कि परिवार की ताकत समझेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनका हाथ थामेंगे, उनके अनुभवों को अगली पीढ़ी तक भी पहुँचाएंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में गीत, फिल्म थी हमारी तुम्हारी। दोस्तों आप क्या सुनना चाहते हैं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है, आपके सुझाव, आपके विचार और आपकी पसंद का स्वागत है। आप हमें मेल भेज सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस है fmgoldga@gmail.com।
1: अच्छा

और अब बात करते हैं परिवार विघटन और हमारे बुजुर्गों की। आज परिवारों में रिश्ते तो हैं, लेकिन कई बार साथ होने का एहसास कम होता जा रहा है। व्यस्त जिंदगी, आपसी मतभेद और बदलती सोच के कारण संयुक्त परिवार छोटे छोटे परिवारों में बंट रहे हैं। इस बदलाव का सबसे गहरा असर हमारे बुजुर्गों पर पड़ता है। जिन माता पिता ने आपकी पूरी जिंदगी बच्चों की परवरिश, उनकी पढ़ाई, उनके बेहतर भविष्य के लिए लगा दी, वही उम्र के उस पड़ाव पर अक्सर अकेले रह जाते हैं जब उन्हें सबसे ज्यादा अपनेपन और साथ की जरूरत होती है। बुजुर्ग हमारे परिवार की जड़ हैं, उनके पास अनुभव है, जीवन की समझ है और रिश्तों को जोड़कर रखने की क्षमता भी है। परिवार तभी मजबूत होता है जब उसमें हर पीढ़ी के लिए सम्मान और जगह हो। आधुनिक जीवन में भागदौड़, हम अपने बुजुर्गों को अकेला ना छोड़ें, उनके साथ समय बिताएं और उनकी ज़रूरतों को समझें, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो टूटते परिवार को फिर से जोड़ने की शुरुआत अपने घर से करें और अपने बुजुर्गों का हाथ थाम कर उन्हें सम्मान प्यार दें जिसके वे सच में हकदार हैं।

और अब बात करते हैं मौसम बदलने में बुजुर्गों के खान पान का भी रखें ध्यान। जी हाँ, बहुत ख्याल रखना पड़ता है जब मौसम बदलता है, क्योंकि मौसम बदलते ही हमारी सेहत पर भी इसका असर पड़ता है। और ख़ासकर घर में बुजुर्गों के बदलते मौसम के साथ साथ खान पान का विशेष ध्यान रखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी भी हो जाता है, क्योंकि बुजुर्गों के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो पर्याप्त मात्रा में पानी और तरल पदार्थ लेते रहें। प्यास कम लगने पर भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। मौसम के अनुसार सूप, छाछ, नींबू पानी या नारियल पानी भी लिया जा सकता है। और खाने में ताज़ा, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन बेहतर रहता है। दाल, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दलिया और खिचड़ी जैसे पौष्टिक विकल्प भोजन में शामिल करें। बहुत ज़्यादा तला भुना, मसालेदार और अत्यधिक मीठा भोजन कम करें। अगर बुजुर्गों को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या किसी प्रकार की कोई अन्य बीमारी की दवा उनकी चल रही है तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही खान पान में बदलाव करें। बहुत ठंडा या बहुत गर्म भोजन लेने से भी बचें। और हाँ, भोजन का समय नियमित रखें। लंबे समय तक खाली पेट रहने की बजाय थोड़ी मात्रा में लेकिन थोड़ा थोड़ा भोजन करना बेहतर है। याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ शरीर को ज़्यादा नहीं बल्कि सही और संतुलित पोषण की ज़रूरत होती है, इसीलिए अपने घर के बुजुर्गों की थाली में स्वाद के साथ साथ सेहत का भी रखें ख्याल। तो स्वस्थ बुजुर्ग और खुशहाल परिवार।

दोस्तों, हमारे बुजुर्ग ज्ञान और अनुभव का खजाना है। उन्होंने ही तो हमें सिखाया प्यार और रिश्तों को कैसे अपनाना है। और इसी खूबसूरत वादे के साथ कि आप बुजुर्गों का रखेंगे खूब सारा ध्यान, और सिमरन कौर को दीजिए इजाजत। आपसे फिर मिलूंगी घर आंगन के अगले शो में। तब तक के लिए नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक चल रही है। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीले डिजिटल बुनियादी ढांचा में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। सरकार ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ छोटे और सीमांत किसानों सहित सभी किसानों तक पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें एक पहल प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले कई वर्ष में इस योजना के तहत बजट आवंटन में काफी वृद्धि हुई है। योजना के अंतर्गत 2024-25 में वास्तविक खर्च लगभग 5,400 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2026-27 में बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। सरकार ने इंडिया पोस्ट के नाम पर ऑनलाइन प्रसारित हो रहे उस फर्जी सर्वेक्षण का खंडन किया है, जिसमें 20,000 रुपए का नकद इनाम देने का

दावा कर लोगों से उनकी निजी जानकारी साझा करने के लिए कहा जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये सर्वेक्षण फर्जी है। इसके जरिए लोगों को फंसाकर उनकी जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रादेशिक सेना ने राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन टेरियस साइबर क्वेस्ट 2026 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य रक्षा, साइबर सुरक्षा और सूचना के क्षेत्र में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए नए समाधान विकसित करना है। हैकाथॉन की शुरुआत साइबर पीस के सहयोग से की गई है। इसके तहत शिक्षा जगत, उद्योग, अनुसंधान संस्थाओं, सरकारी संगठनों और सशस्त्र बलों की तकनीकी प्रतिभाओं को एक साथ लाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने मई 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी।

0: 2025 के अपने फैसले में संशोधन करते हुए प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं में शामिल होने के लिए विधि स्नातकों के लिए 3 वर्ष की वकालत की अनिवार्यता की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2-1 से निर्णय लिया और पुनः समीक्षा से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। इससे संपर्क सुविधा बेहतर होगी और रेल यात्रा अधिक सुविधाजनक बनेगी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज सुबह इस्लामाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकीय जांच के बाद रावलपिंडी के अदियाला जेल वापस भेज दिया गया। उन्हें आधी रात के बाद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाया गया था। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 2 दिन के भीतर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया था। इमरान खान को भ्रष्टाचार समेत कई मामलों में 5 अगस्त 2023 को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे रावलपिंडी की अदियाला जेल में है। ट्रंप प्रशासन ने हिजबुल्ला पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमरीकी प्रशासन ने इस गुट को ईरान के प्रतिनिधि के तौर पर फिर से वर्गीकृत किया है। अमरीका के वित्त विभाग ने 10 ऐसे लोगों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है जिन पर हिजबुल्ला को धन अंतरित करने के लिए जिम्मेदार नेटवर्क का हिस्सा होने का आरोप है। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने 4 दिन में 2 जहाजों का अपहरण कर लिया है। खबरों के मुताबिक लुतुफ में तुर्की के हथियार और उपकरण थे जिन्हें मोगादिशु में एक सेना प्रशिक्षण केंद्र ले जाया जा रहा था। लुतुफ के 10 लोगों के चालक दल में 6 भारतीय, 1 तुर्की नागरिक, 1 जॉर्जियाई और 2 सर्बियाई सुरक्षा गार्ड शामिल थे। मुंबई के कुर्ला पूर्व इलाके में आज तड़के एक क्रेन के घरों पर गिर जाने से 8 लोग घायल हो गए। बृहन मुंबई महानगर पालिका ने बताया है कि घायलों को अस्पताल ले जाया गया। सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,538 जबकि निफ्टी 24,231 पर था। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार अम्स्टरडैम में रात 9:30 शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी The news read by Valsa Williams. India and Brazil have signed a memorandum of understanding to deepen cooperation in telecommunications and information and communication technologies ICTs on the sidelines of the BRICS ICT track meeting. Union Minister Sindhia said in a post that the MOU would deepen bilateral collaboration on universal connectivity, cybersecurity, digital public infrastructure, emerging technologies, capacity building and exchange of best practices. He called the agreement a strong step forward in bolstering India-Brazil collaboration for a secure and inclusive digital future. The MOU was signed on the sidelines of the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune by Union Minister of Communications Jyotiraditya Sindhia and Mr. Frederico de Siqueira Filho, Minister of Communications, Brazil. The 12th BRICS Communications Ministers meeting chaired by Union Communications Minister Jyotiraditya Sindhia is underway in Pune. It brings together communications ministers and senior representatives from BRICS member countries to deliberate on strengthening cooperation in information and communication technologies, digital transformation, innovation and resilient digital infrastructure. The theme of the meeting is Innovate, Cooperate and Transform for a Resilient Future. The event provides a platform for BRICS member countries to exchange views on emerging technologies, digital public infrastructure, future networks, cybersecurity, capacity building, and inclusive digital connectivity. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has underlined India's commitment to deepening economic partnership with Singapore and expanding business partnerships across Asia with greater emphasis on business-to-business collaboration, addressing the non-profit business school INSEAD alumni and students, Singaporean entrepreneurs and Indian businesses at the India-Singapore Business Forum

0: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल और आप इसे सुन रहे हैं एफएम 100.21 मेगाहर्ट्ज पर। 1:11 और ठीक 2 सेकंड कलाकार बेमिसाल लेकर देविका हाजिर है और कलाकार बेमिसाल में आज हमने आमंत्रित किया है एक गुरुजी को। कौन है वो गुरुजी? सुनिए।
1: आदाब गुरुजी,
2: नमस्कार।
1: चाय नोश फरमाएंगे?
2: अवश्य, चाय पान तो करेंगे ही।
1: अले उल सुबह एक कप चाय तबीयत और मिजाज दोनों को बहाल और तंदुरुस्त रखती है।
2: हाँ, प्रतिदिन भोर समय एक प्याली चाय पीने से मन और शरीर दोनों को लाभ होता है। नित्य के लिए तन को स्फूर्ति मिलती है।
1: जी हाँ, जिस्म को चुस्ती तो जरूर मिलती है। चाय यकीनन रक्त की मश्क के लिए बहुत उम्दा चीज है।
2: ये रक्त मश्क क्या होता है?
1: रक्त माने नाच, मश्क माने रियाज।
2: अच्छा भाई, तुम इतनी शुद्ध उर्दू क्यों बोलते हो?
1: आप भी तो बहुत खालिस हिंदी फरमाते हैं जनाब।
2: हिंदी तो हमारी अपनी भाषा है।
1: उर्दू भी तो हमारी अपनी ही जुबान है। दरअसल हिंदी और उर्दू दोनों बहने, जैसे कि हम और आप।
2: क्या बहने हैं?
1: नहीं नहीं नहीं, हम दोनों तो भाई हैं। जैसे कि दो भाई मिलजुल के रह सकते हैं तो क्या बहने नहीं रह सकती? मिलजुल कर रहने में ही तो वतन की तरक्की अर्थात देश की उन्नति, यही कहते हैं ना हिंदी में।
0: जी हाँ, तो कुछ याद आया आपको? तो ये गुरु जी

थे अभिनेता पेंटल साहब और ये किरदार निभाया था उन्होंने फिल्म बावर्ची में। जी हाँ, आज कलाकार बेमिसाल में हम बात करेंगे पेंटल साहब के लिए। और पेंटल साहब को इस भूमिका के लिए 1971 का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। फिल्म थी बावर्ची और आगाज। इसी फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं, इसी गीत से कर रहे हैं, और इस गीत का जो छायांकन हुआ था वो पेंटल साहब पे हुआ। साथ आपको ये भी बताएं कि इस गीत को गाया था चौबे महाराज और लक्ष्मी शंकर ने। मदन मोहन का संगीत, कैफी आजमी साहब के बोल।

जी हाँ, कलाकार बेमिसाल में पेंटल साहब की बात और जो संवाद आपने सुने थे वो फिल्म बावर्ची से थे और जो हुए थे पेंटल साहब और राजेश खन्ना के बीच। अभिनेता पेंटल, जिनका वास्तविक नाम कंवरजीत सिंह पेंटल है और इनका जन्म 22 अगस्त 1948 को पंजाब के तरन तारण में एक सिंह परिवार में हुआ। बाद में ये परिवार दिल्ली के सदर बाजार में आके रहने लगा। अभिनेता कंवरजीत सिंह पेंटल फिल्म इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षित हैं और 1969 में तब के बॉम्बे आ गए थे और अपने फिल्मी जीवन काल में लोगों को हैरानी होगी कि इन्होंने लगभग 103 फिल्मों में काम किया है। आइए सुनते हैं 1980 में आई फिल्म ओ बेवफा का एक गीत। सावन कुमार के लिखे गीत को संगीत से सजाया वेदपाल वर्मा ने, किशोर कुमार के गाए इस गीत का छायांकन हुआ पेंटल साहब पर और साथ में योगिता बाली भी हैं।

जी हाँ, फिल्म ओ बेवफा का गीत आपने सुना है, जिसका छायांकन पेंटल साहब पे हुआ था और कलाकार बेमिसाल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेंटल साहब की, सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल पर। श्रोताओं, ये कहना गलत ना होगा कि पेंटल साहब के फिल्मी जीवन का सुनहरा दौर था 1972, जिसमें आपने बावर्ची जिसमें गुरुजी का रोल निभाया, जवानी दीवानी जिसमें आपने रतन का रोल निभाया, पिया का घर फिल्म में अरुण का रोल और परिचय में ज्योतिषी पंडित जी का किरदार निभाया। 1971 में एक फिल्म आई थी यार मेरा, जिसमें एक बड़ा ही सफल गीत था डर लगे तो गाना गा। इसके छायांकन में जितेंद्र मनमोहन के साथ पेंटल साहब भी थे। नीरज साहब के लिखे गीत को संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने और गा रहे हैं सरों के बादशाह मोहम्मद रफी।

मजाल है। पकड़ भी जाए यार कभी तू बस में रेल में थन में जेल में भीड़ में मेल में सोने में अकेले में सिर

नहीं दो नहीं चीख नहीं चिल्ला नहीं चुप नहीं भाग नहीं सो नहीं जाग नहीं सिर्फ गाना गा।

1:28 कंवरजीत सिंह पेंटल साहब की बात हो रही है कलाकार बेमिसाल में और देविका है आपके साथ कलाकार बेमिसाल लेकर। जब भी कंवरजीत सिंह यानी पेंटल साहब की फिल्मों की बात होगी तो कौन भूल सकता है उन द्वारा निभाया गया सलमा का रोल 1975 की फिल्म रफू चक्कर में, जिसमें उनके समकक्ष थे ऋषि कपूर और दोनों ने ही इस गीत में जो आप आपको सुनवाने जा रहे हैं हम और महिला के किरदार निभाए थे। और ये गीत जब आप सुनेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि कितने प्यारे लग रहे थे दोनों।

जी हाँ, महेश, उषा मंगेशकर और आशा जी की आवाज़ थी और ये फिल्म थी रफू चक्कर। यूँ तो अपनी फिल्मों में पेंचल साहब ने अलग अलग किरदार निभाए हैं, लेकिन आज इस कलाकार बेमिसाल में हमने केवल वही किरदार लिए जिसमें पर्दा स्क्रीन पर वो दिखे हैं या गाने गाए हैं। इस कड़ी में हमने पेंचल साहब की अगली फिल्म ली है 1988 की पाप की दुनिया, जिसमें सनी देओल नीलम जी के छायांकित इस गीत में पेंचल साहब पियानो अकॉर्डियन बजा रहे हैं।

रिहा फिल्म पाप की दुनिया का गीत आपने सुना। अनजान साहब के बोल, बपी लहरी का संगीत और आवाज थी शैलेंद्र सिंह, शबीर कुमार और आशा भोसले की। कलाकार बेमिसाल सुन रहे हैं आप सिर्फ आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। श्रोताओं, पेंटल साहब की एक और बेहतरीन फिल्म थी मेरे अपने, कौन भूल सकता है इस गीत को जिसमें सबका हालचाल ठीक ठाक ही है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल प्रोग्राम है कलाकार बेमिसाल और बात पेंटल साहब की हो रही है देविका है आपके साथ। पेंटल साहब को अपने जीवन काल में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड इन कॉमिक रोल दो बार मिल चुका है। पहली फिल्म थी बावर्ची और दूसरी फिल्म थी चला मुरारी हीरो बनने के लिए। हम आपको ये भी बता दें कि आपके भाई भी उच्च कोटि के एक्टर रहे हैं गोफी पेंटल। आप लोगों को धारावाहिक महाभारत याद होगा। धारावाहिक महाभारत में उन द्वारा निभाया गया शकुनी का किरदार आज भी लोगों को याद है। धारावाहिक महाभारत में हमारे पेंटल साहब शिखंडी के अवतार में नजर आए थे। आकाशवाणी एफएम में गोल्ड ने आज पेंटल साहब को याद किया और कल उनका जन्मदिन है तो आकाशवाणी एफएम गोल्ड उन्हें आने वाले जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता है। और कलाकार बेमिसाल का अंतिम गीत हम लेकर आए हैं फिल्म सत्य बेसत्ता से।

किलो हर्ट्ज पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। आशक संवाद 1947 श्रावण माह की नवमी तिथि तदनुसार सन 2026 अगस्त महीने की दिनांक 21 और दिन है शुक्रवार। श्रोताओं अब से लेकर प्रसारण के अंत तक यानी रात्रि के 9:16 तक प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज आपकी सेवा में उपस्थित रहेंगे प्रसारण निष्पादक श्रीमती संगीत सोमो, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कामे यंगफो और मिस शिखा डेका, ट्रांसमीटर में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री अमल कुमार दास, मनपा में उत्कोषक श्री थुप्तन टाशी तथा अन्य सहकर्मियों के साथ मैं हूं आज की हिंदी उत्कोषिका कर्मो। हम सभी आप तमाम श्रोताओं का आज के इस प्रसारण में स्वागत करते हैं।

एफ 97.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारे केंद्र से आज के तमाम कार्यक्रम आरंभ होते हैं। कार्यक्रम के आरंभ में सबसे पहले आप सुने अब से ही थोड़ी देर बाद यानी दोपहर के ठीक 2 बजे मिट्टी न्यूज तथा 2:15 पर दोपहर समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: Sri Gopi Chand have stormed into the women's double semi-finals of the BWF World Championships in New Delhi. The Indian duo displayed remarkable grit and fighting spirit, coming from a game down to overcome fourth seeds Chia Yifan and Tang Shu Xian of China, 16-21, 21-15, 21-13. In hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in their opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands today. The match is scheduled to begin at 9:30 p.m. Indian Standard Time. Under the new format, the top two teams from Pool E will qualify for the semi-finals. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Home Minister Amit Shah inaugurates and lays foundation stones for several projects of 189 crore rupees at headquarters of Sashastra Seema Bal in Siliguri. India and Brazil sign MOU on sidelines of BRICS ICT meeting in Pune to advance digital innovation and cooperation in emerging technologies. Supreme Court reduces 3-year legal practice to 1 year for entry-level judicial service examinations. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal reiterates India's commitment to deepening economic partnership with Singapore, holds meeting with Trade and Industry Minister of Singapore. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि इससे पहले एसएसबी के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
2: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है। और घुसपैठ रोकने की पूर्व शर्त है कि सीमा को पूरा बना, सीमा पर बाड़ को पूरा लगा दिया जाए।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठ रोकने के लिए ममता बनर्जी से बार बार अनुरोध किए जाने के बावजूद जमीन उपलब्ध नहीं कराई गई। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से एसएसपी के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला रखी गई। गृहमंत्री ने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से सीमा सुरक्षा में तैनात जवानों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। भारत और ब्राजील ने दूरसंचार तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दूरसंचार विभाग ने बताया है कि यह समझौता ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
3: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर

0: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेडरिको डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन, दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले, विश्वसनीय, नवोन्मेषी, सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
2: Over the past decade, BRICS has emerged.
3: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
2: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव्स।
1: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवंत संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अतिथि अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्ध का अनुभव करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाएं देने के संबंध में विधि स्नातकों के लिए अनिवार्य 3 वर्ष की वकालत की अवधि घटाकर 1 वर्ष कर दी है। न्यायालय ने इस बारे में पिछले वर्ष के अपने ही फैसले में संशोधन किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एजी मसे और के विनोद चंद्रन की पीठ ने पुनः समीक्षा को खारिज करते हुए 2-1 से यह फैसला दिया। एक रिपोर्ट।
4: पीठ ने कहा कि 25 मई 2025 से 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित न्यायिक सेवा परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवार पूर्व अनुभव के बिना भी पात्र होंगे। हालांकि इन परीक्षाओं में चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति शुरू में प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारियों के रूप में होगी। उन्हें न्यायिक अकादमी में 1 वर्ष का प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 वर्ष के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 मई को नए विधि स्नातकों को प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षा देने से रोक दिया था और इसके लिए कम से कम 3 वर्ष की कानूनी वकालत अनिवार्य की थी। समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
1: झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है।
5: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार द्वारा जेएसएससी, सीजीएल और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी सीडीपीओ परीक्षाओं की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और जेपीएससी को आगामी 7 सितम्बर तक विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया कि विज्ञापन और नियुक्तियों को अचानक रद्द करने का सरकारी फैसला नियमों के अनुकूल नहीं है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर तय की है। इससे पहले कल जेपीएससी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर और पूरे एशिया के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा कारोबारियों के बीच सहयोग बढ़ाने की भारत की प्रतिबद्धता पर

0: जोर दिया है। सिंगापुर में भारत सिंगापुर कारोबारी मंच को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की मजबूत आर्थिक विकास यात्रा, निवेश के अवसरों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री गोयल ने सिंगापुर के विदेश मामलों और व्यापार तथा उद्योग राज्य मंत्री गन सियो ह्वांग तथा अन्य गणमान्य लोगों से भी मुलाकात की। भारतीय रेलवे जम्मू और श्रीनगर के बीच तीसरी वंदे भारत रेलगाड़ी शुरू करेगा। नई सेवा से लोगों को यात्रा का एक और विकल्प मिलेगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस के उधमपुर स्टेशन पर रुकने की सुविधा का स्थानीय लोगों ने स्वागत किया है। इसे क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। नई वंदे भारत उन यात्रियों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है जिन्हें नौकरी, कारोबार, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी कामों के सिलसिले में जम्मू श्रीनगर आना जाना पड़ता है। अब उन्हें इस सेवा का लाभ लेने के लिए पहले जम्मू या किसी अन्य स्टेशन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधमपुर से ही जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा की जा सकेगी। गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में इतिहास के सबसे बड़े समन्वित आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ेगा। एक साक्षात्कार में श्री बेसेंट ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर द्वितीय प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के आर्थिक उपायों को ध्वस्त करने की धमकी दी थी। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इन आर्थिक धमकियों को खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में अराक्ची ने कहा कि ये धमकी अमेरिकी जनता का अपने घरेलू वित्तीय समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए दी जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लेगा। एक रिपोर्ट।
2: एक निजी रेडियो चैनल के साथ साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अमरीकी सैन्य कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि अमरीका के लोगों को इस संघर्ष के कारण पेट्रोल और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने नहीं दिए जाएंगे और दावा किया कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन बनाने की क्षमता काफी हद तक कम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ईरान में बढ़ती महंगाई, कमजोर मुद्रा और सैन्य कर्मियों को वेतन नहीं मिलना उस पर बढ़ते दबाव के संकेत हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के पास परमाणु हथियार होते तो वह इसराइल और पश्चिम एशिया के अन्य देशों पर हमले कर सकता था। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की मिसाइलों ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत और बहरीन को निशाना बनाया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: अमेरिका ने क्यूबा के निर्माण, खनन और धातु क्षेत्रों से जुड़ी 9 सरकारी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। साथ ही क्यूबा की सरकारी कंपनियों के साथ कारोबार करने वाले अमेरिकी नागरिकों पर भी पाबंदियां कड़ी कर दी गई हैं। क्यूबा में फिदेल कास्ट्रो की 100वीं जयंती से जुड़े समारोहों से वापस आने वाले नागरिकों को अमेरिका म्यामी हवाई अड्डे पर कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित है और कई नदियां उफान पर हैं।
3: मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में सक्रिय मौसम प्रणाली के कारण कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर समेत 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिन में बारिश का असर धीरे धीरे मध्य और पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की संभावना है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: भारत के त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने असाधारण दृढ़ता और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए पहले सेट में पिछड़ने के बाद वापसी की और चौथी वरीयता प्राप्त चीन की जिया यीफेन और झांगशु शियान को हराया। इस जीत के साथ त्रिशा और गायत्री ने प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। भारतीय महिला टीम

0: आज अम्सटरडैम में एफआईएच हॉकी विश्व कप के दूसरे पूल चरण के पहले मैच में मेजबान नीदरलैंड से खेलेगी। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,544 जबकि निफ्टी 24,236 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा परीक्षाओं के लिए 3 वर्ष की वकालत अवधि को घटाकर 1 वर्ष किया। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर के साथ आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्री के साथ बैठक की। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है। और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे दोपहर समाचार। मीडियम में 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 2:30 हो चुके हैं। लीजिए श्रोताओ, अब पेश है भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। इसमें पहले आप सुनिए गांधी स्मृति। गांधी स्मृति में आज आप सुनिए देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी का विचार है।

0: गांधी स्मृति। हरिजनों पर अपने विचार प्रकट करते हुए गांधी जी ने कहा है कि हरिजनों को लोग आज अपना सेवक और गुलाम मानने लगे हैं, पर वस्तुतः वर्णाश्रम के चारों वर्ण ही सेवा के आधार पर बनाए गए थे। किसी का कार्य था धर्म का पालन कराना, तो किसी का धर्म की रक्षा करना। किसी का कार्य था देश की समृद्धि के लिए उद्योग करना, तो किसी का कार्य था सेवा के अन्य कार्य टहल करना। अतः हरिजन को गुलाम मानकर एक पंचम वर्ण चलाना सरासर अन्याय है। आज अन्य लोगों की तरह ही हरिजन को भी विद्वान और व्यवसायी होने का अधिकार है। लीजिए सुनिए हरिजनों पर बापूजी का प्रवचन।
1: अभी आज मैं आपको हरिजनों की बात सुनाना चाहता हूँ। तो वो तो हमारी शरण के लिए है। रोहतक में तो अरिजन जिला में कहो तो वहाँ हरिजन तो हर जगह पे पड़े हैं, तो वहाँ हरिजन रहते हैं। पहले भी था ऐसा, तो वहाँ तो जाट लोग पड़े हैं, शायद अहिर लोग भी पड़े हैं, तो उसी जगह पे हरिजन। तो उनके दिल में कुछ ऐसा ही हो गया है, तो हरिजन वो तो हमारे गुलाम है, तो उनके पास से तो जो कुछ काम लेना है हम लेंगे। और पीछे वहां भी देखो हक की बाटा जाए, हक से लेंगे, क्योंकि वो तो हरिजन है ना। तो वो तो जन्म से ही हमारी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। उसको पानी चाहिए तो पानी हम दे तो पिए, ना दे तो प्यासे रहे। खाना चाहिए हम दे तो खाए, और नहीं तो भूखा रहे। और दलना या दे तो हम दे तो ठीक है, और न दिया तो वो हमसे हक से कुछ ले नहीं सकते हैं। तो इसको तो मैं तकबरी मानता हूँ। तो अंग्रेजी सल्तनत चलती थी तब भी ऐसा करता था, लेकिन अब तो वो चीज ज्यादा बन गई है। तो हरिजन बेचारे वो तो गरीब रहते हैं, मेरे पास आ गए कि हमारे पर तो आज ऐसी गुजर रही है, उसका कोई चारा है, हम कुछ कर सकते हैं कि हम हमको तो अभी गुलामी में रहना चाहिए कि हम मर जाएं, कि वहां से रोहतक जिला को छोड़ दें, क्या करें। अभी वो छोड़ भी नहीं सकते, ये एक समझने लायक बात है, क्योंकि वो तो नहीं मारे उसको कि जाते हैं कहाँ, रहते हैं कि नहीं, और इतना काम करते हैं कि नहीं। क्योंकि वो छोड़ दे बिल्कुल, तब पीछे इसी बात पे जाओ चाहते उसका काम बिगड़ जाता है, और वो तो कभी करने वाले नहीं है, इसलिए उनका काम तो बिगड़ता है। लेकिन हरिजन को तो गुलामी ही करना है, ऐसा हो जाता है। तो मेरे पास आ गए, वो तो बेचारे वो मदरसा में पढ़ते हैं, कोई तो बहुत आगे पढ़ते हैं, कोई छोटा थोड़ा सा पढ़े पड़े हैं, लेकिन पढ़ते हैं और काम भी सीखते हैं, उद्योग भी सीखते हैं। तो वो तो उनकी बात हुई, लेकिन वो लोग जो उनको ताराज कर रहे हैं उनका क्या कहें। तो मैंने आपको ख्रिस्तियों का तो कहा, अब भी हरिजनों पर, और अभी तो ऐसा हो गया ना, अच्छा अंग्रेजी सत्ता चलती थी तो कभी तो हमको मारपीट कर सकते थे, हमको दंड कर सकते थे, अभी हमको आज कौन दंड करेंगे, हम सबको दंड ले सकते हैं। और हमको अगर जज के सामने ले जाए तो जज को हम दया देंगे, जज हमको क्या करने वाला था। ऐसी तकबरी हमारे में पैदा हो जाए तो उसका नतीजा यही आ जाता है कि वो हरिजन है वो तो तबाह होते हैं। तो इसलिए मैंने तो सोचा कि आज की शाम है उसमें आपको मैं हरिजनों की तो करोड़ कथा वो सुनाऊंगा कि अगर इतना भी हम नहीं कर सकते हैं कि जिसमें तो हमारा धर्म पड़ा है, कर्म पड़ा है, कि उनको जो आज तक हम अछूत मानते आए हैं, गुलाम जैसे मानते आए हैं, वो तो हमने बड़ी बड़ा अधर्म किया, गलती की, पाप किया, उसका प्रायश्चित रूप में तो हरिजन सेवक संघ बना है। प्रायश्चित रूप में बहुत हम कर लेते हैं, बहुत किया भी है, लेकिन सब हिंदू ने नहीं किया है। करोड़ों की आप संख्या में हिंदू है तो वो तो एक सारा दरिया पड़ा है, तो जितने उसमें हिंदू है उन्होंने सब अपना नहीं लिए है। तो मुझको ये कवि कथा आपको सुनानी भी क्यों पड़े। तो जब तक हम ऐसा करते रहे और अभी करें, अंग्रेजों के राज्य में तो करते थे तो अंग्रेजों को गालियां देते थे, हाँ वही ऐसे है, नहीं तो हम अच्छे हो जाते, लेकिन अभी तो चले गए तो हम अच्छे हुए कि हम तो बुरे हुए। तो हमको समझना चाहिए कि उन पर हमारे ऐसे जुलम नहीं करना चाहिए। लेकिन मुझको ये डर है कि ऐसा भी हम जातियां करते हैं और करते थे पहले जमाने में, उससे ज्यादा उसका सबब ये है।

लोग हमारे जीवन में एक प्रकार की झूठी हिम्मत आ गई है, तो अभी मारो ख्रिस्तियों को, क्योंकि पहले से ही करो साफ, तो पीछे हम यही तो पीछे हम जाके जाट स्थान बनाएंगे, आहिर स्थान बनाएंगे, और पीछे हर एक अपना बनाएगा, हिन्दुस्तान का कोई नहीं बनाएगा। ये आखिर में हम नतीजे पर आते हैं, इसलिए मैं कहूंगा बार बार कि हमारे हरिजनों को तो अपनाना ही चाहिए, वो तो जैसे हम हिंदू हैं ऐसे ही हैं, वो कोई पंचम जाति है नहीं, पंचम जाति ऐसी चीज हिंदू धर्म में हो नहीं सकती है, चार वर्ण है सही, तो चार वर्ण का भी अर्थ ये तो है ही नहीं मेरी निगाह में, एक ऊंचा और दूसरा नीचा, लेकिन चार में सब जितने पेशे हो सकते हैं, तो एक का काम है कि धर्म सिखाना और करना, दूसरा का है कि धर्म की रक्षा करना, और तीसरा का काम है कि तिजारत करना, तो अपना पेट भर अपना घर भरने के लिए नहीं, करोड़ रुपया पैदा करने के लिए नहीं, अपने लिए, लेकिन करोड़ पैदा करें और शुद्ध कोली हो, और वो सब प्रजा के लिए है, तो पीछे कोई तो सेवा करने वाले होने चाहिए, तो शूद्र तो वो सेवा करे, लेकिन चारों साथ साथ खड़े रह सकते हैं, साथ साथ बेच सकते हैं, ऐसा कोई है ही नहीं कि जो शूद्र है वो पीछे बैरिस्टर बन गया तो बैरिस्टर नहीं कर सकता है, तो भी उसको तो शूद्र का ही मन सेवा का ही काम करना, सब सेवा है, जो धर्म सिखाता है वो भी सेवा करता है, जो रक्षा करता है वो भी सेवा करता है, जो तिजारत करता है वो भी सेवा करता है, और जो चाकरी नौकरी करता है, हमारा पानी भरता है, झाड़ू निकालता है, अनेक काम करता है, वो सब सेवा ही सेवा है, चारों सेवा है, लेकिन चारों सेवा क्षेत्र है उसके लिए वो बनाया, उसके लिए पीछे किसी को वो धर्म सिखाता है उसको ज्यादा सीखना पड़ता है, लेकिन उसका मतलब भी नहीं है कि वो छोड़कर कोई दूसरा करना चाहते हैं तो बड़ा पाप कर लेगा, ऐसा एक वर्णाश्रम धर्म तो पड़ा है, उसको भूल गए, उसका अनर्थ कर लिया, पीछे उसमें से तो अनेक जातियां पैदा की, और उसको पीछे पंचम वर्ण पैदा किया, तो वो तो सब हमारी गलती है, हमारी दुष्टता कहो तो वो है, हमारे हम धर्मों से हट गई इसलिए हमने किया, तो अगर हम आज तो हमारे हाथ में बागडोर आ गई है, तो हम हिंदू हम सिख सब कोई अपने अपने धर्म के मुताबिक चले, तब तो मैं समझता हूँ कि सब काम हो सकता है।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे देश एवं धार्मिक एकता विषय पर गांधी जी का विचार। इसी के साथ ही गांधी स्मृति अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर की 2:45 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना। भक्ति गीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए गायक नरेंद्र चंचल के स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गायक नरेंद्र चंचल की स्वर में चंद हिंदी भक्ति गीत। इसी के साथ ही भक्ति गीतों का दैनिक कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के ठीक 3 बजे है। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है विभिन्न प्रांतों के गीतों का कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। विभिन्न प्रांत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए चंद कोकपुरोक आधुनिक गीत। इसके गायक कलाकार है अरुण जमतिया, जसवा हलीम, प्रियंका और साथी। लीजिए सुनिए कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद कोकबरोक आधुनिक गीतों का आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत।

0: श्रोताओ, इसी कोकपुरोग आधुनिक गीतों के साथ ही कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत अब यही पर समाप्त हुआ। मीडियम वेव 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:30 हुए हैं। डीजे पेश है कार्यक्रम मेरी बात। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए दोर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवंग के 5th सेमेस्टर की छात्र मिस पेमा ड्रोकर से अच्छे संस्कार विषय पर चंद शब्द।
1: आकाशवाणी तवंग को सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं मेरी बात। मैं कुमारी पेमा ड्रोकर दोर्जी खंडू राजकीय महाविद्यालय तवंग में 5वीं सत्र की छात्र हूँ। आज आप सबके समक्ष अच्छे व्यवहार यानी गुड मैनर्स के महत्व पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मनुष्य को सभ्य और सम्मानित बनाने में उसके गुण और संस्कार सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छा व्यवहार वही है जो हमें समाज में सम्मान दिलाता है और हमारे व्यक्तित्व को महान बनाता है। यह बात बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसकी आवश्यकता जीवन में हर पल, हर रिश्ते, हर स्थान पर होती है। अच्छे व्यवहार की शुरुआत हमारे घर से होती है। माता पिता को सम्मान देना, बड़ों के चरण छूकर आशीर्वाद लेना, छोटे भाई बहनों के साथ प्रेम से रहना, यही हमारे संस्कारों की जड़ है। स्कूल में हम कृपया, धन्यवाद, माफ कीजिए, जी सर, जी मैडम जैसे श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग सीखते हैं, जो हमें आदर देना और लेना सिखाते हैं। अच्छा व्यवहार सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि दूसरों की भावना को समझना भी है। जब हम मीठे शब्द बोलते हैं, मुस्कुराकर बात करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो सामने वाले के मन में भी हमारे लिए सम्मान और प्रेम जागता है। इसी कारण कहा गया है, वाणी में मधुरता हो तो रिश्ते अपने आप मीठे हो जाते हैं। हमारा समाज तभी प्रगति कर सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को समझकर शिष्टाचार से साथ जीवन जिए। जैसे रास्ते में बुजुर्गों को सहारा देना, सार्वजनिक स्थानों पर सफाई रखना, कतार में धक्का मुक्की न करना, किसी को चोट न पहुंचाना, अपने आसपास के वातावरण का ध्यान रखना, ये सब व्यवहार हमारे चरित्र का आईना होते हैं। आधुनिक समय में तकनीक ने लोगों को जोर भी दिया है और कहीं न कहीं दूर भी कर दिया है। ऐसे समय में मानवता, विनम्रता और आपसी प्रेम को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। छोटे छोटे अच्छे व्यवहार किसी का दिल बदल सकते हैं और अच्छी आदत अच्छे समाज की नींव रखती है। अगर हम सभी यह संकल्प ले कि हम सबके साथ सम्मान से पेश आएंगे, किसी के मन को दुख नहीं पहुंचाएंगे, समाज की भलाई में योगदान देंगे, तो हमारे देश भी और अधिक संस्कारित, सभ्य और आदर्शी बनकर उभरेगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, अच्छा व्यवहार इंसान की वह पहचान है जो शब्दों से पहले दिलों तक पहुंचती है। इसी सकारात्मक संदेश के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दोर्जी खंडू गवर्नमेंट कॉलेज तवंग के 5th सेमेस्टर की छात्र मिस पेमा डोकर से अच्छे संस्कार विषय पर चंद शब्द। इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरी बात अब यही पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।

0: दादाजी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है। फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादाजी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
1: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
1: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रे तेरी समझदारी का फल।
2: आज ये कहता है स्मार्ट बनो कूल रहो।
3: आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के तवांग केंद्र से बोल रहे हैं। समय दोपहर की 3:33 हुए हैं। लीजिए श्रोताओ, हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नारी संगीत। इस कार्यक्रम का पहला नगमा हमने लिया है फिल्म सिमरन ने, सिमरन से गुरु रंधवा और जोनिता गांधी के आवाजों में। वायु द्वारा संगीत पद पर इस गीत को लिखा है सचिन जिगर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है शंकर महादेवन, सुनिधि चौहान और विशाल ददलानी के स्वरों में फिल्म दोस्ताना से। गीत कुमार के है व संगीत विशाल और शेखर का।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम नारी संगीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से। कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म हैप्पी न्यू ईयर से, श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह के आवाजों में। इस गीत के गीतकार है इर्शिद कमिल तथा संगीतकार विशाल और शिखर।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है फिल्म डियर जिंदगी से जसलीन रॉयल और अमित त्रिवेदी के स्वरों में। कुसार मुनीर के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओ, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नारी संगीत अब यहीं पर समाप्त होता है। हमारा अगला कार्यक्रम सुनिएगा इस संदेश के बाद।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय दोपहर के 3:50 हुए हैं। लीजिए, अब हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनिए, फिल्म सत्यमेव जयते से, गायक आतिफ असलम और तुलसी कुमार के स्वरों में। गीत कुमार के है व संगीत रोचक कोहली का।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनिए अरिजीत सिंह और चिन्मय श्रीपदा के स्वरों में फिल्म टू स्टेज से। इस गीत के गीतकार हैं अमिताभ परिचार्य तथा संगीतकार शंकर एहसान लॉय।

श्रोताओं, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम गीत मंजरी के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, अमिताभ भट्टाचार्य द्वारा शब्द रचना पर फिल्म ये जवानी है दीवानी से, बेनी दयाल और शिफाली अलवर्स के आवाजों में। और इस गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म बधाई दो से, अरिजीत सिंह और रूपाली के स्वरों में। वरुण ग्रोवर के रचे इस गीत को संगीत से संवारा है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म केदारनाथ से अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजों में। अमिताभ भट्टाचार्य के रचे इस गीत को संगीत दिया है अमित त्रिवेदी ने।

श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्म सूर्यवंशी से यह गीत अरिजीत सिंह और नीति मोहन के आवाजों में। रश्मि विराग के लिखे इस गीत को संगीत दिया था जमेट ने। श्रोताओं, कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए अगला गीत पेश है फिल्म केसरी से यह गीत अरिजीत सिंह और एसी स्क्वायर के स्वरों में। तनिष्क बागची द्वारा शब्द रचना पर इस गीत को संगीत से संवारा है तनिष्क बागची ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम पेशकश हमने लिया है अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से। कुमार द्वारा कलमबद्ध पर इस गीत को संगीत से सजाया है सरीब तोशी ने।

श्रोता, फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजरी अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय शाम के 4:30 हुए हैं। लीजिए अब आप सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग। शास्त्रीय संगीत के इस कार्यक्रम में आज आप सुनिए वीजी जोग से वायोलिन वादन तथा तबला पर संगत दे रहे हैं शमाल बोस ने। लीजिए श्रोताओं, पेश है कार्यक्रम राग रंग।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पंडित वीजी जोग से वायोलिन वादन तथा तबला पर संगत दे रहे थे शमाल बोस ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रंग अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा अब से ही थोड़ी देर बाद यानी शाम के 4:45 पर आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचार शाम के 4:55 पर। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के मुख्यालय में 189 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। भारत और ब्राजील ने पुणे में ब्रिक्स आईसीटी बैठक से अलग डिजिटल नवाचार और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पानाइक रिटायर्ड ने दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कैंपस में अत्याधुनिक ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। श्री खांडू ने रक्षा मंत्री को सीमावर्ती क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और आवश्यकताओं से अवगत कराया। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश के जिलों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर द्वारा IIT दिल्ली में प्रारंभिक कार्यशाला आयोजित। इस पर के तत्वाधान में स्पेयर डिवीजन ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के तोतिंग स्थित गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल में सफलतापूर्वक सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी। ईरान ने कहा इसका उद्देश्य अमेरिका की घरेलू आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाना है और वे वैश्विक बैडमिंटन चैंपियनशिप में त्रासी जोली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी महिला डबल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल SSP मुख्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जवानों को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा है कि इससे पहले SSP के कार्यक्रमों में पूर्व मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने इनमें शामिल होना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा है कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सीमा सुरक्षा के लिए पूरा सहयोग दिया जा रहा है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित।
0: श्री शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई है। उन्होंने बंगाल के लोगों के प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया। इस अवसर पर करीब 189 करोड़ रुपए की लागत से SSB के कई शिविरों के निर्माण कार्यों की आधारशिला भी रखी गई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया की अध्यक्षता में पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक जारी है। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के संचार मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल परिवर्तन, नवाचार और लचीली डिजिटल अवसंरचना में सहयोग को मजबूत करने पर विचार विमर्श कर रहे हैं। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन। उद्घाटन भाषण में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की प्रतिबद्धता से प्रेरित लचीले विश्वसनीय नवोन्मेषी सशक्त और समावेशी भविष्य के लिए भारत के दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत की।
2: पिछले एक दशक में ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग के एक प्रमुख मंच के रूप में उभरा है, जो लगभग आधी मानवता और प्रतिभा तथा नवाचार के अपार भंडार का प्रतिनिधित्व करता है। अब हमारा ध्यान संस्थाओं के निर्माण से आगे बढ़कर सहयोगात्मक पहलों को लागू करने की ओर विकसित होना चाहिए।
3: इम्प्लीमेंटिंग कोलैबोरेटिव।
0: भारत और ब्राजील ने दूरसंचार और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी ICT के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दूरसंचार विभाग ने बताया कि यह समझौता ब्रिक्स ICT बैठक से अलग हुआ। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि यह समझौता डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देगा, डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट।
4: पुणे में आयोजित 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक से इतर केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और ब्राजील के संचार मंत्री फेड

0: को डी सिक्वेरा फिल्हो के बीच हुआ। ये समझौता ज्ञापन, दूरसंचार, डिजिटल बुनियादी ढांचे और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में व्यवस्थित सहयोग के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य दोनों देशों में समावेशी, सुरक्षित और मजबूत डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। भारत की वर्ष 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के संदर्भ में ये समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। भारत ब्रिक्स सदस्य देशों के बीच डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार मानकों के क्षेत्र में अधिक सहयोग की वकालत करता रहा है। भारत ब्राजील समझौता दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी का भी एक हिस्सा है।
1: ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक जयपुर में हो रही है। भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के पर्यटन मंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों का स्वागत किया है। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राजस्थान भारत की सदियों पुरानी विरासत, जीवन संस्कृति और अद्वितीय आतिथ्य सत्कार का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि आतिथ्य अपने प्रवास के दौरान राज्य की परंपराओं की गर्मजोशी और समृद्धि का अनुभव करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पारनायक रिटायर्ड ने दोईमुख स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी कैंपस में नए अत्याधुनिक ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन किया। इस सुविधा से हुए पहले लाइव प्रसारण में राज्यपाल ने कहा है कि मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में अत्याधुनिक ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया रिसोर्स सेंटर का उद्घाटन मीडिया एजुकेशन और पब्लिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आरजीयू की यात्रा में एक और अहम पड़ाव है। 11 अगस्त 2023 को कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो रोनो 91.2 FM के उद्घाटन की याद करते हुए उन्होंने कहा है कि ये दोनों चीजें यूनिवर्सिटी की लगातार हो रही तरक्की को दर्शाती है, जिनका हायर एजुकेशन, जन जागरूकता और अरुणाचल प्रदेश के विकास पर दूरगामी असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। श्री खांडू ने रक्षा मंत्री को सीमावर्ती क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और आवश्यकताओं से अवगत कराया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री खांडू ने कहा है कि वे सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने तथा वहां रह रहे लोगों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए पूरे सहयोग और निरंतर सहायता के आश्वासन के लिए रक्षा मंत्री के आभारी है। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने नामसाई में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2026 समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस कार्यक्रम में छात्र, वैज्ञानिक, अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का उत्सव मनाने का साथ ही अरुणाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर विकास में स्पेस एप्लीकेशन की बढ़ती प्रासंगिकता को रेखांकित करना है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम मुख्य रूप से अन्वेषण पर केंद्रित प्रयास के विकसित होकर राष्ट्र निर्माण और नागरिकों के जीवन में सुधार का एक शक्तिशाली माध्यम बन गई है। अरुणाचल प्रदेश के जिलों में के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना तैयार करने के उद्देश्य से ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजरी प्रिवेंशन सेंटर द्वारा IIT दिल्ली में प्रारंभिक कार्यशाला आयोजित की गई। अरुणाचल प्रदेश के परिवहन विभाग ने हाल ही में इस प्रतिष्ठित संस्थान के राज्य के 3 उच्च सड़क दुर्घटना मृत्यु दर वाले जिलों ईटानगर कैपिटल रीजन, ईस्ट सियांग और नामसाई के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना तैयार करने को लेकर सहयोग किया है। इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय की सीमित और निर्देश के अनुरूप सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के लिए साक्ष्य आधारित और स्थानीय विशिष्ट उपाय विकसित करना है। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर ईटानगर में मशरूम पर विशेष जोर देते हुए वर्गीकरण पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। BSI APRC के विभाग अध्यक्ष डॉ. कृष्णा चौलू ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर अपने विचार साझा किए। BSI के निदेशक डॉ. कनक दास ने अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में वर्गीकी के विशेष व्याख्यान प्रस्तुत किए। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश को असाधारण प्राकृतिक प्रयोगशाला बताया है। स्पेयर कोर के तत्वाधान में स्पेयर डिवीजन ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के तोतंग स्थित गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल में सफलतापूर्वक सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में सैनिकों ने विद्यार्थियों को विभिन्न रोचक और संवादात्मक गतिविधियों के माध्यम से जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य जागरूकता, रचनात्मकता, जिम्मेदार नागरिक तथा सामुदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान से जुड़े महत्वपूर्ण जलमार्गों को मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है और जल्द ही उन पर पूरा कब्जा कर लिया जाएगा। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि ईरान को विश्व में

0: देती है। शुरुआत दो राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों से, अब आपकी कहानी भी पूरे देश तक पहुंच सकती है। गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर वेव्स OTT इंस्टॉल करें, खुद को रजिस्टर करें और माई वेव्स सेक्शन के प्रोग्राम्स में जाकर जेम्स ऑफ इंडिया चुनिए, अपना ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करिए और अपनी एंट्री सबमिट कर दीजिए। चुनिंदा कहानियों को मिलेगा वेव्स OTT और प्रसार भारती के राष्ट्रीय मंच पर स्थान, क्योंकि भारत की असली पहचान सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि उसके गांवों, कस्बों और जिलों की उन कहानियों में बसती है जिन्हें दुनिया तक पहुंचने का इंतजार है। अगर आपके पास अपने क्षेत्र की संस्कृति, विरासत, पर्यटन, लोक कला, स्थानीय परंपराओं, प्रेरणादायक व्यक्तित्वों या अनसुनी कहानियों को दुनिया के सामने लाने का जुनून है तो यही है सही अवसर। आइए अपने जिले की पहचान को एक नई उड़ान दें, और सिर्फ पहचान ही नहीं, आपके हुनर को मिलेगा सम्मान भी। जिला स्तर पर 50,000 रुपए, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर 2,00,000 रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 5,00,000 रुपए तक के पुरस्कार आपका इंतजार कर रहे हैं। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज, हर क्रिएटर की अपनी कहानी, हर कहानी एक राष्ट्रीय मंच की हकदार।
1: ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओ, आइए आप सुनते हैं एक जरूरी सूचना। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन अफेयर्स यानी डूडा तवंग के कार्यालय से प्राप्त सूचना अनुसार, तवंग के बेरोजगार और गरीब महिलाओं से जनरल पैरेड ग्राउंड व सर्किट हाउस के निकट स्थित डूडा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकान व रेस्टोरेंट के रूप में संचालित करने हेतु मासिक किराया पर देने के लिए सील्ड बंद कोटेशन आमंत्रित किए गए हैं। कोटेशन आगामी 25 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे तक डूडा तवंग के कार्यालय में जमा किए जाएंगे और उसी दिन दोपहर 3:30 पर बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोले जाएंगे। इस दर प्रस्ताव में भाग लेने की नियम व शर्त कुछ इस प्रकार हैं। कोटेशन फॉर्म आगामी 25 अगस्त 2026 से 25 सितंबर 2026 दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध होंगे। आवेदन के साथ ST सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के पहले पन्ने का जेरोक्स कॉपी और वैध दुकान या रेस्टोरेंट का ट्रेडिंग लाइसेंस भी जमा करवाना होगा। किराए की दर प्रतिमा प्रति कमरा के आधार पर देने होंगे। तवंग जिले के स्थानीय बोलीदाताओं को कमरा आवंटन में प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें पहला नंबर है बिना स्टोर के दुकान के लिए कुल 5 कमरे उपलब्ध हैं और आरक्षित किराया 1,000 रुपये प्रति कमरा प्रति माह तय किए गए है और सिक्योरिटी जमा राशि है 5,000 रुपये प्रति कमरा। दूसरे नंबर पर है स्टोर के साथ दुकान के लिए कुछ 6 कमरे उपलब्ध है और आरक्षित किराया 1,200 रुपये प्रति कमरा प्रति माह और सिक्योरिटी जमा राशि है 7,000 रुपये प्रति कमरा। तीसरे नंबर पर है रेस्टोरेंट के लिए 1 कमरा उपलब्ध है और आरक्षित किराया 1,800 रुपये और सिक्योरिटी जमा राशि है 12,000 रुपये। और चौथे नंबर पर है दुकान के साथ शोरूम के लिए कुछ 4 कमरे उपलब्ध है और आरक्षित किराया है 1,500 रुपये प्रति कमरा प्रति माह तय की गए है और सिक्योरिटी जमा राशि है 9,000 रुपये प्रति कमरा। बोली की दर आरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। सफल बोलीदाता के साथ 3 वर्षों की अवधि के लिए समझौता हस्ताक्षर किया जाएगा और अवधि समाप्त होने पर पुनः कोटेशन आमंत्रित किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम जरोखा से पहले सुनिए यह संदेश।
1: हर जिले की अपनी एक पहचान है, हर परंपरा, हर अनसुनी कहानी, हर छिपी हुई मंजिल भारत का एक अनमोल रत्न है। जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एक राष्ट्रीय पहल जो देश के उभरते डिजिटल क्रिएटर्स और हर जिले की अनूठी पहचान को राष्ट्रीय मंच

सफल बोलीदाताओं को स्वीकृति के बाद सिक्योरिटी राशि बैंक ड्राफ्ट, चेक या नकद के रूप में जमा करवाने होंगे और दुकान व रेस्टोरेंट की देखभाल, मरम्मत एवं रखरखाव का पूरा खर्च सफल बोलीदाता को उठाना होगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप डूडा तवंग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सूचना समाप्त हुआ। लीजिए पेश है कार्यक्रम जरोखा। कार्यक्रम जरोखा में हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रम व कल प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों से। तो आइए हम आपको अवगत करवाते हैं हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के शेष कार्यक्रमों से। अब से ही थोड़ी देर बाद यानी संध्या के 6:20 पर हमारा दैनिक कार्यक्रम छेदन लेडम के अंतर्गत तवंग मठ के उमसे गेलोंग जम्बा सोनम और साथियों से गुंचक सुम्पा और मनला। शाम के 7:10 पर सुनिएगा मन्युल विद्या निकेतन तवंग की दूसरी कक्षा की छात्र तेंजिन पेमा से हिंदी में एक कविता। कविता का शीर्षक होगा घर। आज शाम के 7:11 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम दर्पण। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन पाएंगे एक ही कलाकार गायक मोहम्मद रफी के स्वर में फिल्म तुमसा नहीं देखा, फिल्म जवा मोहब्बत, फिल्म हम किसी से कम नहीं, फिल्म कश्मीर की कली, फिल्म खानदान और फिल्म तुमसे अच्छा कौन है के चंद नगमे। आज शाम के 7:55 पर सुनिएगा एक देशभक्ति गीत। रात के ठीक 8 का वक्त रहेगा आप श्रोताओं द्वारा व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पसंद किए गए चंद सदाबहार पुरानी हिंदी फिल्मी नगमे। आठ बजकर 45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 सुनिए न्यूज एट 9। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। इसी जानकारी के साथ ही कार्यक्रम जरोखा अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का तवंग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेगा मनपा में। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए।

Allah'a emanet olun.

Yamanada,

Bijoda na deva,

Thank you.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप के संस्थापकों ने सरकार के फैसलों की सराहना करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में श्री जायसवाल ने कहा कि इन जहाजों पर सवार सभी 22 नाविक सुरक्षित हैं और सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क में है। विदेश मंत्रालय की सचिव श्री प्रिया रंगनाथन की फलस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फलस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने कहा कि सुश्री रंगनाथन ने फलस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फलस्तीन सरकार को सौंपी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा

0: एसएसबी के मुख्यालय में कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री शाह ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने के बाद राज्य सरकार सीमा सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के साथ पूरा सहयोग कर रही है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि बीएसएफ और एसएसबी के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को स्वीकृति दी थी। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि यह योजना 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है। योजना की अवधि 2026-27 से 2030-31 तक 5 वर्ष की होगी। इस योजना का उद्देश्य मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला मजबूत करने और घरेलू उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इनमें सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना की है। श्री नड्डा ने कहा कि यह विरोध न तो विद्यार्थियों के हित में है और न ही न्याय के हित में। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर लिया है। यह 15 वर्ष में विश्व चैंपियनशिप में महिला डबल्स में भारत का पहला पदक होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi today interacted with chief executive officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. The Prime Minister called for wider applications of space technology to improve the lives of people. Mr. Modi said that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment and suggested creating an ecosystem and an environment where when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between space industry and other social development sectors, the Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture curiosity and interest among young minds for space. Government today reiterated that the welfare and security of Indian seafarers' community is of high priority for India. Briefing the media in New Delhi, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Ranthir Jaiswal, said that India continues to closely follow developments in West Asia. Talking about an incident involving two foreign flagged vessels, Mr. Jaiswal said all 22 seafarers are safe and the government is in touch with the relevant officials regarding this matter to ensure their safety and well-being.
3: two ships which are foreign flagged, they have been hijacked. We are in touch with the authorities that are concerned in this, and we have 22 Indian nationals and all of

0: segments, including incentivizing mobile phone manufacturing and supporting Indian mobile phone brands. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated an exhibition in Siliguri, West Bengal, on the three new criminal laws titled Nyaya Samhita Pradarshini. Initiating the program, Shri Shah said infiltrators will be caught and pushed out from India. He mentioned that earlier the West Bengal government under the Trinamool Congress did not cooperate in implementing the criminal laws in the state. Earlier, Mr. Shah inaugurated and laid the foundation stones for several projects worth around 189 crore rupees at the headquarters of the Sashastra Seema Bal in Siliguri, West Bengal. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda today reviewed the prevailing situation and preparedness for H1N1 influenza in the country, with particular focus on the national capital. The ministry informed that Mr. Nadda emphasized the need for continued vigilance, robust surveillance and proactive preparedness with close monitoring of influenza trends. The government has assured that adequate sugar stocks are available in the country to meet domestic demand despite lower than estimated production. In view of the recent price rise in sugar, the government has taken a series of measures to ensure sufficient sugar availability and maintain stable prices for consumers. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that it is closely monitoring the situation. Legendary Oriya playback singer Pranab Patnaik, whose distinctive voice captivated generations of music lovers, passed away at the age of 88 in Bhubaneswar today. With a career spanning over 5 decades, Patnaik sang for more than 200 films and collaborated with several celebrated national level singers. He was a 7-time Odisha State Film Award winner and recipient of the prestigious Jai Dev Puraskar. The Income Tax Department has said that over 6.5 crore income tax returns have been already filed for assessment year 2026-27. The department has urged taxpayers to avoid last-minute rush, as the last day to file ITR 3, 4, 5 and 7 is before the 31st of this month. And in hockey, the Indian women's team will take on the Netherlands in their opening match of the second pool phase of the FIH World Cup in Amstelveen, the Netherlands today. The match will begin at 9:30 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार. मीडियम एफ 197.2 मीटर यानी 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय शाम के 7:10 हुए हैं. लीजिए पेश है कार्यक्रम आज की कविता. इसमें आज आप सुनिए मोन्यल विद्या निकेतन तवांग की दूसरी कक्षा की छात्र मिस तेंजिन पेमा से हिंदी में एक कविता. कविता का शीर्षक है घर.
2: नमस्ते, मेरा नाम है तंजिम पेमा और मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ. मेरा स्कूल का नाम है मंजूर विद्या निकेतन तावक. मैं आज आप सभी को एक कविता सुनाना चाहती हूँ. कविता का नाम है घर. पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर. घूम धाम ले खेल खाम ले नहीं भूलता लेकिन घर. नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी. प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर. जब थककर वापस आते हैं कैसे बीच बीच जाता कर. चिला पिला आराम दिलाकर नहीं ताजगी देता कर. धन्यवाद.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे मोन्यूल विद्या निकेतन तवंग की दूसरी कक्षा की छात्र मिस तेंजिन पेमा से हिंदी में एक कविता. कविता का शीर्षक था घर. इसी के साथ ही कार्यक्रम आज की कविता अब यही पर समाप्त होता है. ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है. समय शाम के 7:11 हुए हैं. लीजिए पेश है कार्यक्रम दर्पण. इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनिए एक ही कलाकार गायक मोहम्मद रफी के स्वर में चंद गीत. श्रोताओ, कार्यक्रम का पहला नगमा आइए सुनिए फिल्म तुमसा नहीं देखा से गायक मोहम्मद रफी के स्वर में. गीत साहिर लुधियानवी के है व संगीत ओपी नायर का.

श्रोताओ, कार्यक्रम का अगला गीत आई सुनिए, मोहम्मद रफी की स्वर में फिल्म जवा मोहब्बत से यह गीत। इस गीत के गीतकार है हसरत जयपुरी तथा संगीतकार शंकर जयकिशन।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम दर्पण के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही जारी रखते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत, मजरू सुल्तानपुरी द्वारा शब्द रचना पर फिल्म हम किसी से कम नहीं से। गायक मोहम्मद रफी के आवाज में इस गीत के गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी तथा संगीतकार आर डी बर्मन।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला पेशकश हमने लिया है फिल्म नया रास्ता से, गायक मोहम्मद रफी के आवाज में। साहिल लुधियानवी के रचे इस गीत को संगीत से संवारा है दाता नायक ने।

0: श्रोताओं, हमारा अगला गीत सुनिएगा इस संदेश के बाद।
1: मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज लॉन्च कर रहा है 1 अगस्त से। क्या आप इसमें भाग लेना चाहते हैं? आइए सिर्फ 1 मिनट में जानते हैं कैसे। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एपल ऐप स्टोर से वेव्स ओटीटी ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब अपने मोबाइल नंबर या उपलब्ध किसी भी साइन इन विकल्प से रजिस्टर करें और लॉग इन करें। इसके बाद माय वेव्स सेक्शन में जाएं और अपना क्रिएटर प्रोफाइल तैयार करें। अब अवेलेबल प्रोग्राम में से जेम्स ऑफ इंडिया चुनें। अपना ओरिजिनल डिजिटल कंटेंट अपलोड करें, सभी आवश्यक डिटेल्स भरें और सबमिट पर क्लिक करें। एंड योर एंट्री सबमिटेड सक्सेसफुली। जेम्स ऑफ इंडिया, आपकी जिले की कहानी, पूरे भारत की पहचान।
0: श्रोताओ, दर्पण कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं फिल्म कश्मीर की कली से, गायक मोहम्मद रफी की आवाज में। एसएच बिहारी के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है ओपी नायर ने।

0: श्रोताओं, अभी आपने आनंद लिया फिल्म कन्यादान से यह गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। नीरज के रसी इस गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। हमारा अगला गीत सुनेगा इस संदेश के बाद।
1: एक सवाल पूछूं, अगर कल कोई आपके डिस्ट्रिक्ट घूमने आए तो आप उसे सबसे पहले कहाँ ले जाएं?
2: सोचिए, मैं किसी फेमस टूरिस्ट प्लेस की बात नहीं कर रही, मैं उस जगह की बात कर रही हूँ जो सिर्फ आपकी है। शायद वो आपका फेवरेट सनसेट पॉइंट, या फिर वो स्वाद वाला एड्रेस या बचपन वाली गली, या फिर कोई ऐसा मेला जिसके बारे में बाहर के लोग कम ही जानते। बस यही तो आपकी कहानी है और इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का समय आ गया। अपने डिस्ट्रिक्ट की कहानी रिकॉर्ड कीजिए और दिखाइए कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया जन्म छुपा है। तो इंतजार किस बात का?

0: जेम्स ऑफ इंडिया चैलेंज में पार्टिसिपेट कीजिए, 1 से 3 मिनट का वीडियो बनाइए और माई वेब पे अपलोड कीजिए और आप भी जीत सकते हैं 5 लाख, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट के पास है कई कहानी।
1: श्रोताओ, दर्पण कार्यक्रम का अंतिम गीत पेश है फिल्म तुमसे अच्छा कौन है से मोहम्मद रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी द्वारा शब्दबद्ध पर इसे संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम दर्पण अब यहीं पर समाप्त होता है।
1: नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र के 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी सीईओस को संस्थापकों के साथ बातचीत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा है कि देश का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और निवेश के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। उन्होंने ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र और वातावरण तैयार करने का सुझाव दिया जहां जब भी दुनिया अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में सोचे तो उनकी नजर भारत पर हो। अंतरिक्ष उद्योग और सामाजिक विकास के अन्य क्षेत्रों के बीच अधिक सहयोग पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने युवाओं में अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा और रुचि विकसित करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स के साथ अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। अरुणाचल प्रदेश प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष प्रमोद जैन ने आज लोकभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल के टी पारनायक रिटायर्ड से मुलाकात की। इस दौरान जन विश्वास मजबूत करने, जमीन स्तर पर संस्थाओं को सशक्त बनाने, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता, दक्षता और अंतिम छोर तक पहुंच में सुधार के उद्देश्य से चल रहे और प्रस्तावित प्रशासनिक सुधारों की समीक्षा की गई। राज्यपाल ने जोर दिया है कि सुधार व्यवहारिक, जन केंद्रित और भविष्य के लिए तैयार होने चाहिए। उन्होंने अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने, समावेशी विकास तथा यह सुनिश्चित करने पर स्पष्ट ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया कि सुदूर सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों को भी उत्तरदायी और जवाबदेही शासन मिल सके। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में राज्य के लोगों की आकांक्षाओं और शासन की बदलती जरूरतों के अनुरूप बदलाव का आह्वान किया। पापुमपारे जिला प्रशासन और जिला ICDS सेल यूपिया ने विभिन्न संबंधित विभागों के सहयोग से आज दोनों के STO कॉन्फ्रेंस हॉल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटी जन्मोत्सव का आयोजन किया। समारोह को संबोधित करते हुए दोनों कस्टियो नीलाम तान ने महिलाओं और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियमित रूप से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की सराहना की। उन्होंने विभाग को बच्चों के कल्याण, संरक्षण और

0: विकास तथा महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था बताया है। श्वेतान ने कहा कि बेटी जन्मोत्सव केवल एक आयोजन नहीं बल्कि बालिकाओं को महत्व देने, उनकी रक्षा करने के साथ ही शिक्षित और सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश भी है। NTLLP के प्रबंधक निदेशक नवम तालुन ने बताया है कि चल रहे सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट कार्य को पूरा होने के बाद हौज पुतिन सड़क को आगामी 10 सितंबर के बाद आम लोगों के लिए फिर से खोलने की उम्मीद है। श्री तालुन ने कहा है कि सड़क बहाली का कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है और समय पर काम पूरा करने के लिए NTLLP की टीम 24 घंटे काम कर रही है। इस महत्वपूर्ण सड़क के दोबारा खुलने से यात्रियों को राहत मिलने और क्षेत्र में सुगम संपर्क बहाल होने की उम्मीद है। तवांग उपायुक्त नामग्याल आंगमो ने आज प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ITM की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक समन्वय बैठक की अध्यक्षता की। यह आयोजन अगले 28 से 31 अक्टूबर तक तवांग में आयोजित किया जाना है। बैठक में ITM प्रतिनिधियों के तवांग और आसपास के विभिन्न पर्यटन स्थलों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों के प्रस्तावित दौरे और संभावित कार्यक्रम पर विस्तार विमर्श किया गया है। स्वच्छता और जिम्मेदार पर्यटन पर विशेष जोर देते हुए उपायुक्त ने टैक्सी यूनियन और टूर ऑपरेटर्स के प्रतिनिधियों के साथ पर्यटन स्थलों पर उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक और अन्य कचरे के प्रबंधन को लेकर बातचीत की। प्रतिनिधियों ने परिवहन, आवास, चिकित्सा सहायता, यातायात प्रबंधन, प्रोटोकॉल व्यवस्था के साथ साथ अन्य लॉजिस्टिक आवश्यकताओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा की मौजूदगी, स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। इसमें विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि श्री नड्डा ने राष्ट्रीय निगरानी और महामारी विज्ञान की स्थिति, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी ILI और गंभीर तीव्रता श्वसन संक्रमण SARI के रुझानों, जांच और प्रयोगशाला निगरानी तथा मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के दौरान श्री नड्डा ने लगातार सतर्कता, मजबूत निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर जोर दिया तथा इन्फ्लुएंजा के रुझानों पर करीबी से नजर रखने को कहा है। उन्होंने जन जागरूकता और श्वसन स्वच्छता तथा हाथों की स्वच्छता सहित निवारक स्वास्थ्य उपायों पर भी जोर दिया है। उन्होंने लगातार या गंभीर स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों, सांस लेने में कठिनाई अथवा अन्य चेतावनी संकेतों वाले लोगों को तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने की सलाह भी दी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज शुभशाची भट्टाचार्य विद रीजनल न्यूज। Prime Minister Narendra Modi today interacted with chief executive officers, CEOs and founders of 20 space startups in New Delhi. During the interaction, PM Modi called for wider applications of space technology to improve the lives of people. He noted that the country's space sector can become a magnet for global talent, companies and investment, and suggested creating an ecosystem and an environment where when the world thinks of space, it looks towards India. Emphasizing greater collaboration between space industry and other social development sectors, the Prime Minister encouraged greater collaboration with Atal Tinkering Labs to nurture curiosity and interest among young minds for space. He also congratulated the leaders of the space sector for showing courage and taking the lead in a new area. He said that the confidence shown by the sector has strengthened the vision with which the space sector was open to private participation. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda today reviewed the prevailing situation and preparedness for H1N1 influenza in the country with particular focus on the national capital. The Health and Family Welfare Ministry informed that Mr. Nadda reviewed the national surveillance and epidemiological situation, ILI and SARI trends, testing and laboratory surveillance and preparedness of healthcare facilities to manage seasonal influenza cases. During the meeting, Mr. Nadda emphasized the need for continued vigilance, robust surveillance and proactive preparedness with close monitoring of influenza trends. He also emphasized public awareness and preventive health practices, including respiratory hygiene and hand hygiene, and advised individuals with persistent or severe respiratory symptoms, breathing difficulty or other warning signs to seek medical advice promptly. Chairman of the Arunachal Pradesh Administrative Reforms Commission, Pramod Jain, called on Governor Lieutenant General Retired K.T. Parnag at Lok Bhavan, Itanagar.

श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही देशभक्ति गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। मीडियम वेव 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर और साथ ही एफएम 104 मेगाहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के ठीक 8 बज चुके हैं। लीजिए श्रोताओं, अब पेश है व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाशी गीतों का कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला फरमाइश हमें प्राप्त हुई है सियेरा लियोन पश्चिम अफ्रीका से, शेख जियाउर रहमान से पेश है फिल्म थानेदार से यह गीत, बप्पी लहरी और अनुराधा पोटवाल की आवाजों में। इंडिवर के लिखे बोल पर इस गीत को संगीत से सवारा है बप्पी लहरी ने और इस गीत के बोल है तम्मा तम्मा लोगी।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। असलगांव बाजार, तहसील जलगांव जामुत, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र से आप है राजू माथे, गजानन माथे, ज्ञानेश्वर माथे और संजय माथे, और मानीवादा रोड नागपुर से आप है देवेंद्र बाटकर जी। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म रामू दादा से यह गीत, लता मंगेशकर और साथियों के आवाजों में। मजरू सुल्तानपुरी द्वारा शब्द बद पर इसे संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने, और इस गीत के बोल है, दिन है सुहाना मस्ताना।

श्रोताओ, इस वक्त आप चंद व्हाट्सएप मैसेज द्वारा पसंद किए गए फरमाइशी गीतों का आनंद ले रहे हैं। कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत के अंतर्गत आकाशवाणी के तवांग केंद्र से कार्यक्रम को यूं ही आगे बढ़ाते हुए लीजिए सुनिए यह अगला गीत फिल्म सोतन से। सावन कुमार द्वारा संगीत निर्देशन पर उषा खन्ना के लिखे बोल पर इस गीत को आवाज दे रहे हैं गायक किशोर कुमार ने। इस गीत के बोल है जिंदगी प्यार का गीत है। इस गीत के लिए हमें पेश करने की गुजारिश की है जंगुंग अनि कुंपा से। आप है अनि संग और अनि रिपे, आप दोनों की पसंद पर पेश है यह गीत।

श्रोताओ, अगला नगमा पेश करने की हमें गुजारिश की है नालेश्वर नगर नारवल महाराष्ट्र से आभे पीएस नावकर, निर्मला नावकर और विशाल नावकर, और मालकापुर से आप है नारायण इंगले, सोपन तैदे और आशीष मुरेकर। आप सबकी पसंद पर पेश है फिल्म अमरदीप से यह गीत, गायिका लता मंगेशकर की आवाज में। राजेंद्र किशन द्वारा लिखे बोल पर इस गीत को संगीत से सजाया है रामचंद्र नरहार ने। इस गीत के बोल है मेरे मन का बावरा।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम फरमाइश हमें प्राप्त हुई है न्योमदुंग तवंग के संगीत सवंग तशी ड्रेमा छुम से और यूसुर के कर्मा छोटन से। आप सबकी फरमाइश पर पेश है फिल्म दिल है कि मानता नहीं से यह गीत अनुराधा पोटवाल और अभिजीत के स्वरों में। फैज अनवर की लिखे बोल पर इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस गीत के बोल है दिल तुझ पे आ गया।

गीत का, जिसके तहत हमने पेश किए आप सभी के वत्सल फरमाइशों पर आधारित कुछ बेहद प्यारे सदाबहार नगमे। अगर आप इस सुरों की महफिल में शामिल होना चाहते हैं तो हमें सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक वत्सल जरूर करें। हमारा वत्सल नंबर है 6033914908। साथ ही अपना नाम, पता, गीत के बोल और फिल्म का नाम लिखना ना भूलें, ताकि आपकी पसंद हमारे जरिए सब तक पहुंच सके। इसी के साथ आपकी फरमाइशों पर आधारित हमारा यह रोमानी और यादों भरा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत यही समाप्त होता है। फिर मिलेंगे कुछ और हसीन यादों, कुछ और नगमों के साथ। आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से ही थोड़ी देर बाद, यानी रात के 8:30 पर स्पोर्ट्स कैन, 8:45 पर समाचार सिंधिया तथा रात्रि के 9:00 बजे सुनिए न्यूज़ @9। कृपया हमारे साथ बने रहें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। देश दुनिया की तमाम खेल खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और अगले 15 मिनट तक आप रहेंगे मेरे साथ और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में और भारतीय खिलाड़ियों ने आज कहां कहां पर अपना सिक्का जमाया है। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की खास खबरों पर। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बनाई और पदक पक्का किया। वहीं भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक अंडर 20 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन बनी। विश्व कप हॉकी में आज रात भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से, और दो बार की ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड में लॉजेन डायमंड लीग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं नई दिल्ली, जहां पर इस समय विश्व वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप खेला जा रहा है। सेमीफाइनल में जगह बना ली है और भारतीय जोड़ी त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने, और भारत के लिए कम से कम एक कांस्य पदक उन्होंने पक्का कर लिया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी ने विश्व की चौथे नंबर की जोड़ी जिया यी फैन और झांग शूशियान के खिलाफ पिछड़ने के बाद शानदार वापसी की और ये मुकाबला 16-21, 21-15 और 21-13 से जीत लिया।
1: A fantastic performance from the two Indians and hugely appreciated by a gloriously partisan crowd.
2: Teresa Jolly in tears. Yeah. She hugs Pulela Gopichand and father and daughter embrace.
1: Oh, they've guaranteed themselves a medal. They've knocked out one of the top pairs in the event and they have given the home crowd something to really enjoy.
0: हम अपने सुनने वालों को बता दें कि इससे पहले 2011 में ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पुनप्पा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आइए अब सीधा जुड़ते हैं अपने संवाददाता भानु प्रताप सिंह थे और जानते हैं उनसे और क्या कुछ रहा आज। भानु को हम से पहले कि हम लाइन पे ले, हम आपको और बताते हैं कि 70 मिनट तक चले मुकाबले के बाद त्रिशा और गायत्री ने जिया और झांग को पहली बार हराने पर कहा कि उनका यह सफर अभी रुकने वाला नहीं है। इसके अलावा आज एक और बैडमिंटन के कोर्ट से एक अच्छी खबर हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन वो अच्छी खबर नहीं है। जब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग

0: किंग और वॉन्ग चोंग की जोड़ी से सीधे गेम में हार गई। अपने संवाददाता के पास चलते हैं भानु के पास और जानते हैं कि आज क्या कुछ रहा स्टेडियम के अंदर। भानु, भारतीय जोड़ी ने इस जीत के साथ पदक तो पक्का कर लिया है, लेकिन अब फाइनल में उन्हें कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। आज के मैच को देखते हुए क्या संभावनाएं लगती हैं?
1: आज के मैच को देख के संभावनाएं बहुत ज्यादा लगती हैं। जैसा आज पीसा और गायत्री गोपीचंद ने खेला, उनका गेम पर बहुत ही अच्छा नियंत्रण रहा। उन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज से अपना गेम खेला और बहुत ही आत्मसंयम अपना बरकरार रखा गेम के दौरान। तो कल के मैच के लिए वो बहुत ही अच्छा रहेगा। कल वे पहली वरीयता प्राप्त ली शेंगशु और टांग निन से सामना करेंगी। तो जैसा कि आज उन्होंने एक चाइनीज पेयर को हराया है, तो कल भी वह एक चाइनीज पेयर के खिलाफ खेलने वाली है। तो आज उनका जो कॉन्फिडेंस होगा वो बहुत बरकरार रहेगा कल के मैच के लिए।
0: भानु, पहले गेम में देखने पर ऐसा लगता था कि जैसे कि भारतीय जोड़ी में थोड़ा विश्वास कम है, आपसी समझदारी भी थोड़ी सी कम लग रही थी, क्योंकि शुरू में वो लगभग 4-0 से पीछे थी पहले गेम में। हालांकि पहला गेम उन्होंने हार गई, दूसरे गेम में भी वो पीछे थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। आखिर के दोनों गेम से भारतीय जोड़ी के प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है?
1: जी, उन्होंने बहुत ही आक्रामक अंदाज जैसा कि मैंने बताया दिखाया। उन्होंने एक अच्छी पॉजिटिव अप्रोच ली अपने गेम की तरफ। उन्होंने हार नहीं मानी एंड तक। गौर की बात है कि जंग शुशियान और जिया इरफान की जो जोड़ी थी, उसमें जिया इरफान दो बार ओलंपिक पदक विजेता रह चुकी हैं। 2020 के ओलंपिक्स में उन्होंने रजत पदक जीता था, वही उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो उनके खिलाफ खेलना कोई बहुत ही आसान बात नहीं थी, लेकिन तब भी उन्होंने अपना आत्मसंयम बरकरार रखा और बहुत ही अच्छे से उस गेम को खेला। जब वो पहला गेम हार गई थी तब थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी जरूर दिखाई थी, लेकिन उन्होंने दूसरे गेम से अपना कोऑर्डिनेशन अच्छा रखा। जहां तीसरा जॉली ने अटैक मोड अपनाया था, गायत्री गोपीचंद ने नेट संभाला और ओवरऑल उनका नियंत्रण बहुत अच्छा रहा पूरे गेम के दौरान।
0: भानु, स्टेडियम में भारत की इस जीत पर दर्शकों का उत्साह कैसा था?
1: दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता था। बहुत ही अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया अपने प्लेयर्स को। दिन पर दिन जैसा कि हम देखते जा रहे थे कि प्लेयर्स की जैसे तादाद, जो भारतीय प्लेयर्स की तादाद कम हो रही थी अलग अलग डिसिप्लिन में, लेकिन जितने प्लेयर्स आगे बढ़ रहे थे उसके हिसाब से बहुत ही क्राउड जो था सपोर्ट में आया था। आज दोनों मैचेस के लिए क्राउड का सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा, और जैसा कि मैंने बताया गायत्री गोपीचंद और रीसा जॉली के मैच में भी उनका सपोर्ट बरकरार रहा।
0: लेकिन इस बीच भानु, एक अच्छी खबर नहीं आई जब सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में हार गई। इस पे क्या राय है? हालांकि वो दोनों ही गेम में बहुत दबाव पे नजर आए और 21-18 और 21-9 से हार गए।
1: जी, उनका पहले जो लियांग वी कैंग और वांग चैंग के खिलाफ उनका पहले से ही अच्छा रिकॉर्ड नहीं था। इस मैच से पहले उनका 9-4 का रिकॉर्ड था। चार मैचेस ही उन्होंने उनके खिलाफ जीते थे। और आज भी जैसा कि हमने देखा कि जो चाइनीज जोड़ी थी उन्होंने अपना फ्लैट गेम बहुत ही अच्छा रखा। सात्विक साईराज जानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी फ्लैट गेम के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करती है, तो वही गेम उन्होंने उनके खिलाफ खेला और उसी से उन्होंने जीत हासिल करी। और इसके सामने वो सात्विक साईराज जानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी परेशानी में नजर आई। नवीन,
0: धन्यवाद भानु हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए
1: धन्यवाद।
0: आइए वापस चलते हैं अब त्रिशा और गायत्री के गेम की तरफ। जिया और झांग को पहली बार हराने पर कहा कि उनका सफर अभी रुकने वाला नहीं है।
2: He was from the starting only was telling that be in the present moment and very calm because that help us to scoring the points and that really worked today that we were not greedy to just get the points. We were just be patient and waiting for the right time to just scoring the points. I think that really worked.
0: वैसे किसी भी खिलाड़ी को तैयार करने और मैच जितवाने के लिए कोच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और यही रोल हमें आज इस मैच में देखने को मिला जब पुलेला गोपीचंद ने इस रोमांचक मुकाबले में भारतीय जोड़ी को धैर्य रखने का मैसेज दिया और अंत में इस जोड़ी ने रोमांचक मुकाबले के बाद मैच अपने नाम किया। मैच के बाद त्रिशा ने बताया कि उनके कोच जो थे हर पॉइंट पर उन्हें धैर्य रखने को कह रहे थे।
2: Today was also a pretty good match, I think, yes, pretty tough match. We were down, trailing, and then even in the second set, it was very tricky. But then I think we told each other to stay calm, and I think that's what we're going to do tomorrow as well. We just want to get on court and give 100%, just enjoy.
0: ये थी बैडमिंटन से खबरें जो बहुत अच्छी खबर आ रखी, और कल सबकी नजर रहेगी महिला डबल्स पर। अब आपको हम लिए चलते हैं हॉकी के मैदान की ओर। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज एम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। इससे पहले कल भारत ने पूल जी के अंतिम मैच में इंग्लैंड के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। वहीं बात करते हैं

0: अब भारतीय पुरुष हॉकी टीम की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पेरिस ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड के साथ कल होने वाले विश्व कप के दूसरे दौर के मुकाबले को करो या मरो का बताया है। कल बड़ा जबरदस्त मुकाबला खेला जाएगा भारतीय पुरुष टीम और नीदरलैंड के बीच में। इस बीच हरमनप्रीत ने कहा कि उनकी टीम को पूरे 60 मिनट अच्छी हॉकी खेलनी होगी।
1: जो हमने मिस्टेक्स की हैं और उस पर हमने काफी बात की है मीटिंग्स में, एंड स्पेशली विदाउट बॉल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो रिस्पांसिबिलिटीज हैं पोजीशन वाइज, उसको हमने कैसे मेंटेन करना है और कैसे अच्छे कम्युनिकेशन के साथ उन गलतियों को कवर कर सकते हैं हम, तो वो हमने एनालाइज किया है वीडियोज में। एक वही एरिया है कि जहां पे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले मैचेस में वो सिली मिस्टेक्स आपको पनिश कर सकती हैं। हमारा वही है फोकस के डिफेंस में अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमारे पता है कि हमारी टीम चांसेस क्रिएट कर सकती हैं ओपोनेंट्स के सर्कल में जाके और एटलीस्ट पीसी और गोल ऑन शॉट और गोल कर सकती।
0: इस बीच हम आपको बता दें पूल डी के पहले दौर में वेल्स और पाकिस्तान को पराजित करने वाली भारतीय टीम इंग्लैंड से हार गई थी, जिससे दूसरे दौर में पहुंचने के लिए भारत के पास एक भी अंक शेष नहीं बचा है। इंग्लैंड इस जीत के साथ 3 अंक लेकर पूल डी के दूसरे दौर में पहुंच गई है, जबकि पूल ए में नीदरलैंड के पास भी 3 अंक है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए नीदरलैंड और अर्जेंटीना को हराना होगा। और अब बात कुश्ती की। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में एक बार फिर विश्व चैंपियन बन गई हैं। काजल लगातार दूसरी बार इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। स्लोवाकिया में आयोजित इस प्रतियोगिता में काजल ने 76 किलोग्राम कैटेगरी में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और ब्यौरे के साथ मुकेश।
2: काजल की इस ऐतिहासिक जीत ने महिला कुश्ती में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही उन्होंने 76 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में हिस्सा लिया और शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए चीन की झिंगरू सुन को 7-0 से हराकर विश्व खिताब अपने नाम कर लिया।
3: काजल इज गोना डू इट ट्वाइस, सो गुड, शी हैज वन द टाइटल अगेन। काजल ऑफ इंडिया इन दिस अनस्टॉपेबल 2026 सीजन विद अनदर टाइटल, हर फिफ्थ ऑफ द ईयर, एंड दिस विल बी द मोस्ट स्वीट ऑफ ऑल।
2: फाइनल में काजल के लगातार दबाव बनाने के कारण सुन शुरू से ही बैकफुट पर रही। काजल ने इससे पहले 2024 में 69 किलोग्राम के वर्ग में अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप और 2025 में 72 किलोग्राम में अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीता था। काजल ने 2025 में 72 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीतने के बाद इस वर्ष अपना वेट क्लास बदला और 76 किलोग्राम वर्ग में मुकाबला किया। ये भारतीय रेसलर लगातार दूसरी बार अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियन बनी है। वो अपने देश की दूसरी ऐसी रेसलर हैं जिन्होंने इस लेवल पर 2 बार स्वर्ण पदक जीता है। पूरे टूर्नामेंट में काजल ने बिना कोई पॉइंट गंवाए खिताब अपने नाम किया। 2026 में ये उनका लगातार 5वां स्वर्ण पदक है। आज का दिन सिर्फ काजल के नाम ही नहीं था बल्कि भारत की तनु शर्मा और सविता ने भी रजत पदक अपने नाम किए। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अगली खबर है अब जेवलिन थ्रो से। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भाला फेंक प्रतियोगिता में रजत पदक जीतने वाले और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड के स्टेट ओलंपिक डेला पॉन्टिस में लॉजेन डायमंड लीग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। मैच भारतीय समय अनुसार रात 12 बजे से शुरू होगा। और ब्यौरे के साथ निखिल।
4: लॉजेन डायमंड लीग बेहद रोमांचक होगी। इस इवेंट में कई ओलंपिक, वर्ल्ड और यूरोपियन चैंपियन खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। पुरुषों की जैवलिन स्पर्धा में दक्षिण एशिया के 2 सबसे बड़े स्टार, भारत के नीरज चोपड़ा और श्रीलंका के रोमेश थरंगा पाथिरगे एक बार फिर आमने सामने होंगे। नीरज चोपड़ा लॉजेन डायमंड लीग 2026 में टॉप पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लॉजेन में वे 4थी बार उतरेंगे। ये लीग चोपड़ा का 2026 एथलेटिक सीजन का 3रा प्रतियोगी इवेंट है। श्रीलंका के पाथिरगे ने जून में रोम में 92.62 मीटर साथ ब्रसल्स में होने वाले फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। वहीं पूर्व ओलंपिक और डायमंड लीग चैंपियन नीरज चोपड़ा स्टैंडिंग में पीछे हैं। उन्हें लॉजेन में आज एक बड़े करिश्माई थ्रो की जरूरत है। नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जैसे ही एक मजबूत फील्ड में यूरोपियन स्टार्स के साथ मुकाबला करेंगे। पिछले 4 ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप खिताब जीतने वाले 5 जेवलिन सुपरस्टार्स 21 अगस्त को एक दूसरे को कड़ी टक्कर देंगे। इस प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा और पथिरगे के अलावा त्रिनिदाद एंड टोबैगो के वालकॉट और ग्रेनाडा के पीटर्स हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने इवेंट से अपना नाम वापस ले लिया था। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: इस बीच भारत 22 और 23 अगस्त को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स के युवा मंत्रियों और खेल मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया बैठक की अध्यक्षता करेंगे। युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा खडसे भी इसमें हिस्सा लेंगी। इस बैठक में सभी 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख

एक साथ आएंगे ताकि युवा मामलों और खेलों में सहयोग को मजबूत किया जा सके। ये बैठक युवाओं के विकास और सशक्तिकरण में सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित होगी और इसमें शिक्षा, स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, कल्याण और सतत विकास पर चर्चा होगी। ब्रिक्स यूथ काउंसिल मीटिंग और ब्रिक्स युवा सम्मेलन से सामने आई खास सिफारिशों पर विचार किया जाएगा और ब्रिक्स के अगले अध्यक्ष के सहयोग से भविष्य के क्षेत्रों में पहचान की जाएगी। और खेल मंत्रियों की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और उनके बयान शामिल होंगे और इसके बाद संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। और अब घड़ी की सुइयां हमें इजाजत नहीं दे रही है इस कार्यक्रम को हम और आगे बढ़ाएं। चलते चलते हम अपने सुनने वालों को बता दें कि त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय जोड़ी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और एक पदक पक्का कर लिया है। वहीं भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर विश्व चैंपियन बन गई है। विश्व कप हॉकी में आज रात भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से होगा और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज स्विट्जरलैंड के लॉजिन डायमंड लीग में अपनी चुनौती पेश करेंगे। आज के इस अंक में बस इतना ही। मेरी सहयोगी निशा साहू और ज्योत्सना के साथ मुझे आज का स्पोर्ट्स स्कैन समाप्त करने की दें इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी इस समय फोरम को संबोधित कर रहे हैं, आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की व्यवस्था है, 10,000 से ज्यादा लेवल क्रॉसिंग गेट्स को भी इंटरलॉकिंग से जोड़ा जा चुका है। इससे ह्यूमन एरर से होने वाले हादसों की आशंका बहुत कम हुई है। साथियों, जब 2014 में हमारी सरकार आई तो करीब 9,000 फाटक ऐसे थे जो अनमैन्ड थे। इन्हें हटाना कोई रॉकेट साइंस नहीं था। अनमैन्ड क्रॉसिंग की वजह से हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन पहले की सरकारों को इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता था। हमने मिशन मोड में गत 10 वर्ष में इन अनमैन्ड क्रॉसिंग को समाप्त कर दिया।
0: प्रधानमंत्री ने आज नई दिल्ली में अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 20 स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। उन्होंने लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र वैश्विक प्रतिभाओं, कंपनियों और

0: निवेश को आकर्षित करने का केंद्र बन सकता है। बैठक में स्टार्टअप संस्थापकों ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे अंतरिक्ष क्षेत्र में कई नए अवसर सृजित होंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज सिलीगुड़ी के कावाखाली मैदान में 3 नए आपराधिक कानूनों पर 6 दिन की जागरूकता प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधान नगर पुलिस कमिश्नरेट के नवनिर्मित भवन और नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 20 बिस्तरों वाले नशा मुक्ति केंद्र का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता BNS के 3 नए आपराधिक कानूनों से नागरिकों की सुरक्षा और मजबूत होगी। श्री शाह ने कहा कि भाजपा के लिए देश, राज्य और जनता की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
1: सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर 1129 एकड़ भूमि BSF और SSB के लिए शुभेंदु जी ने दे दिया। कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। मित्रों, ये तत्परता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नाते नहीं है। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है ना भारत सुरक्षित रह सकता है।
0: श्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA के बारे में कहा कि पुराने दंड कानूनों को समाप्त कर नई भारतीय न्याय संहिता बनाई गई है जो प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और समय सीमा पर आधारित है।
2: मैं बांग्लादेश से आए हुए हिंदू, सिख, जैन शरणार्थियों को वादा कर जाता हूँ कि 6 माह में आप सभी को हम नागरिकता दे देंगे। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने अपने सारे अधिकार बंगाल सरकार के 8 कलेक्टरों को दे दिए हैं। एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर पश्चिम बंगाल से निकालने का मैं फिर से एक बार बंगाल की जनता को वादा करना चाहता हूँ।
0: गृह मंत्री ने कहा कि अवैध प्रवासन कतई बर्दाश्त न करने की नीति जारी रहेगी और अवैध प्रवासियों को पहचानने, नाम हटाने और निर्वासित करने की प्रक्रिया सख्ती से लागू की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि हर अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने कहा कि जनसांख्यिकी बदलाव को भी सख्ती से रोका जाएगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी संख्या में उपस्थित कॉलेज, विश्वविद्यालय तथा कानून के विद्यार्थियों तथा अन्य नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि 3 नए कानूनों से देश व राज्य की जनता और अधिक सुरक्षित होगी। उन्होंने आगे कहा कि जुलाई 2024 से ही देश में यह कानून लागू हो गया था, परंतु विगत की TMC की ममता सरकार ने इसे पूर्ण रूप से लागू होने नहीं दिया, परंतु भाजपा की सरकार आते ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस कानून को पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सिलीगुड़ी से अशोक चौरसिया।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, हालांकि इसका उत्पादन अनुमान से कम रहने की संभावना है। सरकार ने चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को देखते हुए पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमतें स्थिर रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। रिपोर्ट।
4: सरकार चीनी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए जमाखोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मंत्रालय ने पाया कि कुछ चीनी मिलों और व्यापारियों द्वारा जमाखोरी की वजह से भी चीनी की कीमतें बढ़ी हैं। सरकार ने 1 अगस्त से 30 नवंबर तक पूरे देश में चीनी व्यापारियों के लिए अधिकतम 400 टन का स्टॉक रखने की सीमा तय की है। इसके अलावा थोक उपभोक्ताओं को 1 सितम्बर से 15 दिन की खपत से ज्यादा चीनी का स्टॉक रखने की इजाजत नहीं होगी। सरकार द्वारा राज्यों और चीनी मिलों को 15 अक्टूबर से पेराई शुरू करने की सलाह दी गई है। इससे अक्टूबर में चीनी का उत्पादन सामान्य 3 से 4 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 10 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिससे त्योहारों के मौसम में चीनी की उपलब्धता और बेहतर होगी। दीपेंद्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि वो स्थिति पर करीबी नजर रख रहा है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की कीमतों में हाल की बढ़ोतरी को इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के इस्तेमाल से जोड़ना सही नहीं है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज मोबाइल फोन विनिर्माण योजना MPMS का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले महीने 62,500 करोड़ रुपए के बजट आवंटन के साथ इस योजना को मंजूरी दी थी। मंत्रालय ने योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। योजना का उद्देश्य उत्पादन का स्तर बढ़ाकर मोबाइल विनिर्माण की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और व्यापक बनाते हुए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को सशक्त बनाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में देश की स्थिति मजबूत करना है। इस योजना से भारतीय मोबाइल ब्रांड को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर सृजित करने में भी मदद मिलेगी।

0: नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि यह योजना भारतीय स्वामित्व वाले मोबाइल ब्रांड, बौद्धिक संपदा और डिजाइन के विकास को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगी।
1: भारत में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट का इकोसिस्टम बहुत वाइड स्प्रेड हो गया है। एमएसएमई और फाइनल प्रोडक्ट्स के बीच में पूरा एक वैल्यू चेन का रिलेशन है। उस तरीके से ये चीज डेवलप हो रही है। पीएलआई केवल एक प्योरली प्रोडक्शन बेस था, इसमें डोमेस्टिक वैल्यू के लिए अलग से, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन के लिए अलग से रखा गया है, और साथ ही साथ इंडियन ब्रांड को डेवलप करने के लिए, इंडियन आईपी को डेवलप करने के लिए, इंडियन डिजाइन को डेवलप करने के लिए अलग से प्रोविजन रखे गए।
0: इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने कहा कि योजना की अवधि के दौरान देश में मोबाइल फोन का संचयी उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। सरकार ने फिर कहा है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा और कल्याण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखे हुए है। श्री जायसवाल ने विदेशी ध्वज वाले दो जहाजों से संबंधित घटना के बारे में कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क बनाए हुए है।
2: टू शिप्स विच आर फॉरन फ्लैग,
3: दो जहाज हैं, दोनों पर विदेशी झंडे लगे हैं, उन पर कुल 22 भारतीय नाविक सवार हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक वे सभी सुरक्षित हैं। सरकार उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में संबंधित अधिकारियों से संपर्क में है।
2: वी आर इन टच विद द अथॉरिटीज दैट आर कंसर्न्ड इन दिस।
0: विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन की फिलिस्तीन यात्रा के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि यात्रा के दौरान उन्होंने फिलिस्तीन के विकास साझेदार के रूप में भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। प्रवक्ता ने बताया कि सुश्री रंगनाथन ने फिलिस्तीन के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप भी फिलिस्तीन सरकार को सौंपी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज देश में H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में श्री नड्डा ने निरंतर सतर्कता, निगरानी और सक्रिय तैयारियों की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इन्फ्लुएंजा के मामलों पर कड़ी नजर रखने के भी निर्देश दिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के पास स्वास्थ्य सेवा उन्नत बनाने का अनूठा अवसर है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि तकनीकी उपलब्धियां सुलभ, सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली हों। डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत का चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र वर्तमान में लगभग 12 अरब डॉलर का है। भारत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ब्रिक्स युवा मंत्रियों और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठकों की मेजबानी करेगा। ब्रिक्स युवा मंत्रियों की बैठक कल और ब्रिक्स खेल मंत्रियों की बैठक 23 अगस्त को होगी। इन बैठकों की अध्यक्षता युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे। सरकार ने कहा है कि संशोधित व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के 29 प्रस्तावों के बारे में सूचना मिली है। इनमें 4,800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों में सूचना प्रौद्योगिकी, एआई, संचार, विनिर्माण, औषधि, डेटा सेंटर और परिवहन सेवाओं सहित कई क्षेत्र शामिल हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब कुछ खेल खबरें। FIH हॉकी विश्व कप के दूसरे चरण में आज अम्स्टरडैम में भारतीय महिला टीम का मुकाबला मेजबान नीदरलैंड से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले कल भारत ने पूल डी के अपने अंतिम मैच में इंग्लैंड के साथ गोल रहित ड्रॉ खेलकर दूसरे दौर में प्रवेश किया था। भारतीय महिला पहलवान काजल ढोचक ने लगातार दूसरी बार अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। महिलाओं के 76 किलोग्राम वर्ग में काजल ने फाइनल में चीन की जिंगरू सून को 7-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। 72 किलोग्राम वर्ग में भारत की तनु शर्मा और 62 किलोग्राम वर्ग में सविता ने रजत पदक अपने नाम किया। 68 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक के लिए फाइनल में भारत की मानसी लाथेर का मुकाबला चीन की चेंग लिंग से होगा और 59 किलोग्राम वर्ग के रैपिचेस राउंड में कोमल स्पेन की रोजा मोलिना के साथ खेलेंगी। नई दिल्ली में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने महिला डबल्स में चीन की यी फैन और झांग शू की जोड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस जीत के साथ इस जोड़ी ने भारत के लिए एक पदक सुनिश्चित कर दिया है। मौसम विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश में

0: मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। असम, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित भारत के उत्तर पूर्वी भागों में भी इस महीने की 24 तारीख तक तेज बारिश की आशंका है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: सेंसेक्स 3 अंक की बढ़त के साथ 77,541 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी दर्ज करता हुआ 24,252 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में लगभग सपाट रहते हुए 95.71 रुपए पर बंद हुआ।
0: और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत ने पिछले 10 से 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, सरकार सुधारों के लिए प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री ने लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग का आह्वान किया। 20 अंतरिक्ष स्टार्टअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और संस्थापकों से बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने प्रत्येक अवैध प्रवासी को देश से बाहर भेजने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सरकार ने कहा, देश में घरेलू मांग को पूरा करने के लिए चीनी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के आवंटन के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने H1N1 इन्फ्लुएंजा संक्रमण की मौजूदा स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। और हॉकी में FIH हॉकी विश्व कप में दूसरे चरण में आज भारतीय महिला टीम का मुकाबला नीदरलैंड से। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwini Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister JP Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. Prime Minister Narendra Modi has said India has been seen as a bright spot of growth throughout the globe, even as the world has many concerns regarding growth and resources are getting weaponized. Addressing the Economic Times World Leaders Forum in New Delhi this evening, the Prime Minister said India continues to take several steps to ensure continued growth momentum and reforms are commitment of his government.
3: दुनिया ने बड़ा भयंकर एक रूप देखा है इन दिनों, रिसोर्सेज का वेपनाइजेशन हो रहा, अविश्वास का वातावरण विश्व के लिए अनेक नई चुनौतियां लेकर के आ रहा, लेकिन ऐसे समय में भी दुनिया भारत को ग्रोथ और होप के ब्राइट स्पॉट के रूप में देख रही है। भारत ने पिछले 10-12 साल में अपनी 25 करोड़ आबादी को गरीबी से बाहर निकाला है।
2: The Prime Minister said India has moved away from production-linked punishment model during earlier governments to production-linked incentives now. He alleged it was a policy of earlier regimes to keep people in scarcity so that they beg before the government for even basic needs. Mr. Modi said license raj of earlier governments was used to increase unemployment while his government's production-linked incentive model creating opportunities. We now go over live to the Prime Minister's address.
3: साथियों, पॉलिटिक्स में अक्सर वही फैसले हेडलाइंस बनते हैं जिनका असर आज दिखाई दे, यानी उसकी उम्र 24 घंटे हो। पहले की सरकारों ने इलेक्शन सामने देखकर भी घोषणा करने का फॉर्मूला अपनाया, लेकिन ऐसी घोषणाओं से देश नहीं बदला। देश बदलने वाले फैसले वो होते हैं जिनका प्रभाव जमीन पर दिखे। जो वर्तमान और भविष्य

0: and Wang Chang in the quarterfinals today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a global bright spot for growth amid concerns over global growth and weaponization of resources. Home Minister Amit Shah reiterates government's commitment to deport every illegal immigrant from the country. Government assures availability of adequate sugar stocks to meet domestic demand. Union Minister Ashwani Vaishnav launches mobile phone manufacturing scheme with outlay of over 62,000 crore rupees to enhance domestic supply chain and global competitiveness. Health and Family Welfare Minister J.P. Nadda reviews situation and preparedness for H1N1 influenza in the country. And in Hockey World Cup, Indian women's team to take on the Netherlands in the second pool phase match. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित अभी आप सुन रहे थे न्यूज एट 9। मीडियम एफ 197.2 मीटर अर्थात 1521 किलोहर्ट्ज़ पर आपकी सेवा में ये आकाशवाणी का तवांग केंद्र है। समय रात के 9:15 हुए हैं और अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। तो जाते जाते हम आपको हमारे केंद्र से कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों से अवगत करवाते हैं। कल दोपहर के 3 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम प्रादेशिक संगीत। शाम के 5 बजे कार्यक्रम नमधर लेरिम। कल शाम के 7:10 पर आप सुनिए स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम साज और आवाज का आनंद लीजिएगा शाम के 7:30 पर। कल रात के ठीक 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम पुरानी हिंदी फिल्मी गीत। 8:45 पर समाचार संध्या तथा रात्रि के ठीक 9 बजे सुनेंगे न्यूज एट 9। श्रोताओ, कल हम फिर हाजिर होंगे दोपहर के ठीक 2 बजे। तब तक के लिए कार्यक्रम निष्पादक श्रीमती संगीत सोमो, कंट्रोल रूम में उपस्थित तकनीकी अभियंता श्री कामे यंगफो और